FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: Jaya Bharati. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के

0: तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे मानव, ये शरीर प्रभु ने तुझे सीमित अवधि के लिए प्रदान किया है। इसका सदुपयोग कर, प्रभु नाम का स्मरण कर, क्योंकि

0: संवेद सुरों में मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, पंडित भीमसेन जोशी, हरिओम शरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार भक्ति। आलेख प्रमिला हरियाणा का है, वाचन कर रहे हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलुषता रह नहीं सकती। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार के समान। पर जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अतएव जो मनुष्य कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता ही नहीं रहती, और वो भक्ति में लीन रहने के कारण पहले से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। इसी तरह गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, समत्व बुद्धि योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन बताए हैं उन सब में भगवत भक्ति को सर्वोत्तम बताया गया है। भक्ति सुगम होने से उत्तम है, इतनी ही बात नहीं, भक्ति की यह विशेषता है कि भक्त अपने नेत्रों द्वारा भगवान को देख सकता है तथा भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण की गई हर वस्तु भगवान स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर ग्रहण करते हैं। ये बात ज्ञान योग या किसी अन्य योग से संभव नहीं है। जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। लेकिन भक्ति को समझ पाना इतनी शुद्ध और शक्तिमान आत्मा के वश की बात है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और वह परम धर्मात्मा बन जाता है, और फिर उसे परम शांति मिल जाती है, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। अतः शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत से भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी होगी वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस पर मनुष्य भगवान की दिव्य भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जमाने की इच्छा करता है तो वो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इसी

0: है। संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान व शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है।
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार भक्ति। आलेख प्रमिला हरियाणा का था। वाचन कर रहे थे यतीन्द्र चतुर्वेदी।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर अनुराधा पौडवाल का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर होगा राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 6:50 पर होंगी खेती की बातें। विषय होगा हरी खाद की उपयोगिता। प्रातः 7 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज भाषा झलकी चंपो के दादा। आलेख श्याम सुंदर सुमन का रहेगा। प्रस्तुति रहेगी टीएन शर्मा की। साथ ही आनंद लेंगे ब्रज लोक गीतों का। प्रातः 8:30 पर होगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। प्रातः 9 बजे बातचीत के क्रम में आज सुनिएगा ब्रज की जैव विविधता और पर्यावरण के विषय में बातचीत। शिवराज भारद्वाज से भेंट करेंगे ओपी सिंह। प्रातः 9:30 का समय होगा कार्यक्रम ब्रज दर्पण का। प्रातः 10 बजे सुनिएगा नौटंकी मद निषेध। आलेख लक्ष्मण प्रसाद सिंह खलीफा का होगा। प्रस्तुति रहेगी टीएन शर्मा की। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 10:30 से। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस होगा दोपहर 12 बजे। श्याम कमल रसिक के गाए हुए ब्रज लोकगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 से। बहनों का कार्यक्रम घरंगना होगा दोपहर 1:15 से। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा विश्व आलू दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस। साथ ही सुनिएगा वार्ता गर्मियों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल और ध्यान देने योग्य बातें। जानकारी देंगी रमा सक्सेना। दोपहर 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। संध्या 5:30 से होगा दूसरे सभा का आरंभ कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात होगी राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती और आयुष्मान भारत योजना पर। साथ ही सुनिएगा भेंट वार्ता।

0: मार्गदर्शन के अंतर्गत विषय होगा बच्चों के व्यवहार पर पारिवारिक एवं शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। श्वेता कुलश्रेष्ठ से भेंट करेंगे ओपी सिंह। संध्या 6:15 का समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का। कार्यक्रम में आज चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस और गर्मियों में पशुओं का खास ध्यान रखें, इन विषयों पर। साथ ही सुनिएगा भेंट वार्ता, गर्मियों में कलीलियों से होने वाले रोग, बचाव एवं प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे जितेंद्र सिंह गांधार, इनसे भेंट करेंगे विजय सिंह नौलखा। भक्तिपरक फिल्मी संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:45 से। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद भागवत कथा में आज आप सुनेंगे कृष्ण बलराम मथुरा गमन का प्रसंग। कथाकार होंगे कृष्ण बिहारी पाठक। समय होगा 7:05। शाम सुहानी ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:31 से। रात्रि 8 का समय रहेगा फिल्म संगीत का, एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:30 से। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें, हरी खाद की उपयोगिता। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु किसान एक फसली द्विफसली कार्यक्रम और विभिन्न फसल चक्र अपना रहे हैं, जिससे मिट्टी का लगातार दोहन हो रहा है, जिससे उसमें उपस्थित पौधों के बढ़वार के लिए आवश्यक पोषक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। इस क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न तरह के उर्वरक और खाद का उपयोग किया जाता है। उर्वरक द्वारा मिट्टी में सिर्फ आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि एनपीके और जिंक इत्यादि की पूर्ति होती है, मगर मिट्टी की संरचना, उसकी जलधारण क्षमता और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को क्रियाशीलता बढ़ाने में इनका कोई भी योगदान नहीं होता। इन सब की पूर्ति के लिए हमें अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति जीवाणुओं की मात्रा और क्रियाशीलता पर काफी निर्भर करती है, क्योंकि बहुत सी रासायनिक क्रियाओं के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता रहती है। जीवित और सक्रिय मृदा वही कहलाती है जिसमें अधिक से अधिक जीवांश हों। जीवाणुओं का भोजन प्राय कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं, इनकी अधिकता से मृदा की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। केवल कार्बनिक खादों जैसे कि गोबर की खाद, हरी खाद, जीवाणु खाद द्वारा ही स्थायी रूप से मिट्टी की क्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें हरी खाद प्रमुख है। इस क्रिया में अधिकांशतः हरे दलहनी पौधों के वानस्पतिक सामग्री को उसी खेत में उगा करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद फसल के गुण कुछ इस प्रकार होने चाहिए। फसल में वानस्पतिक जो भाग है अधिक हो और तेजी से बढ़ने वाली होनी चाहिए। फसलों की वानस्पतिक भाग मुलायम और बिना रेशे वाले हो, ताकि जल्दी से मिट्टी में वो मिल सके। फसलों की जो हैं जड़ें गहरी हों, ताकि नीचे की मिट्टी को भुरभुरी बना सकें और नीचे की मिट्टी के पोषक तत्व ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो सकें। फसलों की जड़ों में अधिक ग्रंथियां हों, ताकि वायु के नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में स्थिरीकरण कर सकें। फसलों का उत्पादन खर्च कम हो तथा प्रतिकूल अवस्था जैसे कि अधिक तापमान है, वर्षा अधिक हो रही है, इसके प्रति उनमें सहनशीलता हो। तो कुछ ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो कि हरी फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी हों, और इनमें विशेष करके सनई है, ढैंचा है, लोबिया है, उड़द मूंग है, इनका प्रयोग अपने इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में किया जाता है। हरी खाद की फसल से अधिकतम कार्बनिक पदार्थ और नत्रजन प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवस्था पर ही उनकी पलटाई की जाती है। इन फसलों को लगभग 30 से 45 दिन की अवधि में ही पलटना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पलटने के समय पौधे नरम हों और फूल आने से पहले ही फसल को पलट दिया जाए।

किसान भाइयों, हरी खाद केवल नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थों का ही साधन नहीं है, बल्कि इससे मिट्टी में कई पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार एक टन ढेंचा के शुष्क पदार्थ द्वारा मिट्टी में जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं वो इस प्रकार हैं: नाइट्रोजन करीब 26 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 7.5 किलोग्राम, पोटास

0: उपलब्ध होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार एक टन ढेंचा के शुष्क पदार्थ द्वारा मिट्टी में जो पोषक तत्व तो उपलब्ध होते हैं वो इस प्रकार हैं: नत्रजन करीब 26 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 7.5 किलोग्राम, पोटास 17.5 किलोग्राम, गंधक 2 किलोग्राम, कैल्शियम 1.5 किलोग्राम और मैग्नीशियम 1.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, वायु संचार अच्छा होता है, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, अम्लीयता और क्षारीयता में सुधार और मिट्टी में जो मृदा क्षरण भी कम होता है। हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता में वृद्धि होती है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति और उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी जनित रोगों में भी कमी आती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हरी खादों के प्रयोग से खरपतवारों की वृद्धि रोकने में भी सहायता मिलती है।
1: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे जानकारी हरी खाद की उपयोगिता के विषय में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमा प्रबंधने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम् अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत-पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च सम्बोधयन् आसीत्।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर
2: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापारनेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतम स्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 92,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधि प्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता, यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षार्थ 3.0 अधिकम दक्षम

0: पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुख योजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानां उपलब्धता सुनिश्चेतुं चतुस्सप्तति सहस्राधिकैक लक्ष क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् संबोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटंस दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटंस दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत।
2: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
3: अच्छा जी

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं भोले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं मनमौजी फिल्म में लता मंगेशकर को। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: ओरिजिनल प्लान था कि लता के साथ डुएट होगा, तो लता उन दिनों में शायद बाहर गई हुई थी क्या, कुछ प्रॉब्लम था, तो किशोर सजेस्ट थे, दादा मैं अगर दोनों वॉइस में खुद गा लूँ फीमेल और मेल, तो मैं सोचा जोक कर रहा है, नहीं आपको मैं गा के सुनाता हूँ, आप सुनिए। एंड एक्चुअली ही डिड ए वंडरफुल थिंग, इमीडिएटली ही मेड इन टू फीमेल वॉइस एंड इमीडिएटली जंप बैक टू मेल।
1: हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया,
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना, हम मीठे बहना तोरे नैना, हाय हाय मीठे।

किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म हाफ टिकट में। सलिल चौधरी के संगीत से सजे हुए इस गीत को शब्द दिए थे शैलेंद्र ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है हकीकत। स्वर मोहम्मद रफी, तलत महमूद और साथियों के हैं। शब्द रचना कैफी आजमी की है, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ी। कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। यह विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
3: मऊ जनपद फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
2: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांवों के विकास से ही साकार होगा।
4: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के सामयिक प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की

किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।

0: संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गांव विकसित होंगे।
1: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कल कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने TET को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि TET केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में TET पास करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें।
1: इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कोरोस केरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है।

0: प्रदेश में बीते गुरुवार की रात से मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में जनधन की हानि हुई है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जबकि गुरुवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में कई वाहन बह गए। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शाकंभरी देवी मंदिर प्रबंधन ने कल तक मंदिर में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के बीच बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ी। कल दो पालियों में आयोजित की जाएगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र, हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
4: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी 24 घंटों में खराब मौसम, तेज आंधी, भारी वर्षा एवं वज्रपात की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी नगर व क्षेत्रवासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें एवं पेड़ों, बिजली के खंभों तथा कमजोर निर्माणों से दूर रहें। मौसम खराब होने पर खुले स्थानों में खड़े होने से बचें तथा बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें एवं सतर्क रहें। धन्यवाद।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनबे बारे हमारे सभी श्रोता साथिन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया आप तो जानो ही हो कि यह समय चल रहा है पुरुषोत्तम मास, यानी कि अधिक मास, और यह विशेष महीना को विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथन में बताया गया है। और याई ताई या ब्रज मंडल में अत्यंत श्रद्धालु दर्शनार्थी दूर दूर से पधार रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर परिक्रमा लग रही है, दर्शन है रहे हैं। और ठाकुर जी के मंदिरन में ठाकुर जी के जो उत्सव मनाए जा रहे हैं, विनको तो वर्णन करवो लगभग असंभव है। यह समय पे हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल विभिन्न स्वरूपन में सज रहे हैं, कभी वे दूल्हा बन रहे हैं, कभी वे ग्वाल बन रहे हैं, कभी वे काऊ रूप धारण कर रहे हैं, कभी काऊ रूप धारण कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के भोग प्रसाद आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं। ऐसी सुंदर सुंदर झांकी मंदिर में सजाए जा रही हैं, ऐसे मनोरम दृश्य प्रस्तुत है रहे हैं कि जाए देखते देखते पलक निहारवो तक श्रद्धालु भूल जामे, अपनी पलक तक नाए झपके। ऐसे विभिन्न सुंदर सुंदर दर्शनन के ताई जाने कहाँ कहाँ से श्रद्धालु या ब्रजमंडल में आए रहे हैं। यह तो बात भई ब्रजमंडल के मंदिरन की, लेकिन या कारण ते ब्रज में भीड़ को अत्यधिक दबाव बन रहे है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप ब्रज में पधारवे को कार्यक्रम बनाए रहे हो तो वीकेंड पे आए थे बचो, यानी के छुट्टी के दिना जो शनिवार रविवार होया करे हैं विंत में आए हुए थे बचो, जाते आप थोड़ी सी राहत मिल सके। थोड़ी सी आलियां कह रही हूँ क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप काऊ दिना यहाँ पधारो, आप सामान्य रूप से दर्शन करवे में समस्या अवश्य आएगी। लेकिन फिर क्योंकि यह तो ठाकुर जी को द्वारो है, यहाँ पे सब आयवे को अधिकार है, सब चामे के या विशेष महीना में प्रभु के दर्शन एक झलक मात्रु है जाएं तो हम स्वर्ग पाए जाएंगे। तो भैया अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते भय, क्योंकि या समय जो मौसम है ना, वाकई विषय में कछु कह बोल बहुत मुश्किल है। कभू बहुत जोर की बरसात है रही है, कभू गर्मी अत्यंत पड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते भय फिर घर ते निकसो। और विशेष रूप से बच्चा और बुजुर्गन को तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यह तो भाई बातें, अब आपको सुनवाऊं एक लोकगीत।

मेघ शाम के सुर में अभी सुनो आपने ये लोकगीत। और आओ भैया अब सुने ब्रजभाषा झलकी चंपो के दादा। या को आलेख श्याम सुंदर सुमन को है, प्रस्तुति है TN शर्मा की।

0: चंपो की महतारी, अरे ओ चंपो की महतारी।
1: हाँ चंपो के दादा आई।
2: क्यों हेला पे हेला दिए चले जा रहे हो, कहाँ बात है?
0: अरे चंपो की महतारी, ऐसी जी में आ रही है कि दम्मो की खैर खबर ले आऊं। अब की छुट्टी में वो गांव ना आयो, ना जाने कहा बात है।
2: जैसी त्यारी मर्जी, नाती नातिन को देखे आई हूँ, पर ये गांव की पंचायती ना पीछे छोड़े, कैसे जाओगे? तुम्हारा निकास ना हो
0: तो आज ही के अध्या देने घर जाऊं।
2: मैं तो कल की त्यारी बातन ते ही भाप गई हती कि त्यारो मन गांव ते उछट रहे हो है, या हमारे सकारे के अड्डा ते तुम चल दोगे। मोते तुम अब मुड़े को काय को पूछ रहे हो?
0: अरे तू तो मेरे रुआ रुआ में बस रही है जो है। तू ते दुराब के हो चंपो की महतारी, पर जी बात बताए कि तेरे मेरे जावे को कुछ प्रबंध करियो है का?
2: क्यों ना है, मैंने देखो अंगो छा में टिक्कर सेक के धर दी ने रहे हो साग, सो हवाल रांधे दो।
0: अरे मेरी धोपती और पनाह तो ले आ, रेल को अद्दा आमती होएगो जो साग फागे पीछे रांध लीजो, झटपट जा सब सटर पटर कर दे मेरी है।
2: जी ले ओ सगरी चीज वत ने कबीर भाई के हाथ पावन ने फुराए डारो तुम तो, तेरी जे जवानी की आदत अब तो ली ना गई।
0: अच्छा तो अब मैं चल रहे हूँ, तू अपनो ध्यान रखियो। अच्छा चंपो की मेहदारी, देख अंधेरी रात है, ध्यान धरियो।
2: बेग बगदियो कहूं बहु बेटान की सेवा में रीच के मेरी सुध मत बसार दीनो चंपो के दादा।
0: अरे चंपो की मेहदारी जो है सो का ऐसी बात क्यों कह रही है, तू तो मेरी जिंदगानी है।
2: हटो परे को,
0: तू छोड़ के मैं मर रही कैसे पाऊंगो चंपो की
2: बुढ़िया। रह गए पर तुम्हारी जे ठटोरी करवे की आदत अब तो लीन आ गई।
0: अरे
2: कोई सुनेगो तो कहा कहेगो चंपो।

0: दादा हटो।
1: बूढ़ो तो मैं बूढ़ो कितना मत दिस रहे हूँ री।
0: अरे 60 साल के तो है गए, बूढ़े ना है तो का तुम अभी तौली जवान हो।
1: दत्तेरे की तो तू जहाँ आ रहे मुझे बूढ़ो कह रही है तो जिनासल के 60 सो 60
0: कहा के वेगी तो घर में चौकस में लगे पीछे को जाओ स्टेशन घर में थो रही है चलो चलो पीछे जाओ चंपो के।
1: अरे दादा तो कहे कि चंपो की करत रहेगी तू तो है ना घर में। तेरी मेरी जीवन की रेलगाड़ी को स्टेशन तो तू ही है चंपो।
0: अच्छा,
1: की
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा, तो जाओ।
1: मनते कह रही है ना। हाँ, अच्छा तो अब हम चलें।
0: हाँ मनते कह रही हूँ जाओ। सुनो मेरी बात तो सुनो ने, खीसा कतरंते अपने खीसा को बचाए के रखियो।
1: खीसा कतरंते तो अपने खीसा बचाए रखूंगा चंपो की मेहतारी, पर जो अपने मन के खीसा है तोते कैसे बचाए रखूं।
0: तो बड़े बेटे हो, हटो बड़े को हटो अब जाओ।
1: अद्धा हाईवे में अभी टिकट तो ले ही चुके। अब जब नल के पत्थर पर बैठ के चंपो की मैया के फूलन के से हाथन ते से के टिकरन को स्वाद चख लो। अरे पर साग तो है ही ना है। हाँ वो आ रहा पूरी साग बारे में। ओ ठेकेदार, ओ भैया पूरी साग बारे ठेकेदार नहीं भैया। अरे भाई, अरे भाई ठेकेदार ये पूरी का हाथ दी है पूरी साग।
2: अरे पूरी नहीं है, 7 रुपया टिक्कर दी है, 4 रुपया समझे चौधरी।
1: और साग
2: साग, अरे साग तो मफत मिले पूरी के संग और का है।
1: अरे भैया तो मुझे साग ही दे दे, टिक्कर तो मेरे ढिंग है।
2: ए, टिक्कर तो तेरे ढिंग है, तेरे बाप का संभाल है, साग ही दे दे फुकट में आवे का। ठीक वो अच्छा आएगा बा में जाए बैठ जा और मई खाइए तू अपने टिक्कर ने समझे कि ना साग खा ले।
1: जा डब्बा में कुछ उसीर सी है, मैं जही में चढ़ जाऊं खिड़की दे लूंगो ना तुझी मेहन की फुहार दे सबरो भीज जाऊंगो। ठीक है जही डब्बा में चढ़ लो। गाड़ी हकी तो सही, जाने कब पहुंचूंगा दम्मू के घर।
3: टिकट टिकट टिकट अपने टिकट निकाल लीजिए आप लोग।
4: ये
3: लीजिए साहब, लाइए आपके बच्चे का टिकट लिया है आपने।
4: ये है देखिए।
3: अच्छा आप
5: टिकट लीजिए। लीजिए भाई लाइए, ये देहरादून
3: का टिकट है जी। अच्छा जी, अच्छा बड़ी टिकट बना था, हम जल्दी में बैठ
5: गए थे। रुके रुके अभी बात और टिकट
3: देख लेंगे। अरे क्या
5: करता है जी? ए बाबा
3: बाबा टिकट लेकर बैठे हो ना। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बाबा, टिकट लेकर बैठे हो ना।
1: और का बेरंग बैठो हूँ, जो ऐसा मेरे स्वाफा में चिपकी टिकट सुनाई दी खरी।
3: लाओ मुझे दिखाओ जरा कहाँ है टिकट।
1: जी लो।
3: अरे ये तो प्लेटफार्म है। अरे टिकट दिखाओ टिकट।
1: अरे बाबूजी तो धोखो दे गए हो, हद दे गई बाबूजी। एक लंबी लंबी जुल्फन मारो, खिड़कीन पे भीड़ देख के मैंने बाबू टिकट लाए हुए को रुपया दे रहे थे, वो मुझे पेट फार्म पकड़ा के चलो। गजब है वो बाबू।
3: तो बाबा तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या?
1: बचपन में दद्दू खूब कह करते कि फलाने पढ़ी ले पर मैं न पढ़ो। भाई बात को नतीजा भुगतना पड़ रहा है बाबू जी, मो यार हद देगी भाई।
3: अरे बाबा आजकल पढ़े लिखे बिना काम नहीं चलता है समझे।
1: चलते वक्त चंपो की मेहतारी ने मुझे खीसा कतरंते बचवे की बात तो कही थी, पर टिकट के बदले प्लेटफार्म देवे वाले जुनफन वाले आदमी ने बचवे की बात वो ना समझ आए। वो संग होती तो कबू ऐसा न होता बाबू जी।
3: ठीक है देखो सफर में होशियारी रखने की जरूरत होती है। खैर अच्छा ये बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारी कहाँ तक की टिकट बनाओ।
1: पूछ तो है सर, यो जानो जी अद्धा सुरक्कू जा रहे हो, जानो कहाँ है भाई अपने दम्मो के ढिंग जानो है।
3: कहाँ रहता है तुम्हारा दम्मो?
1: अरे अपने घर में रहिए और दूसरे घर में रहेगो।
3: ओहो अरे भाई मेरा मतलब ये नहीं है,

0: मैं तो ये पूछ रहा था भाई।
1: बाबूजी जाई साल माने अपनो नयो मकान बनवायो है, जाके ताई बाय सरकार उदे कर्जा लेमनो परो हतो। बड़ा सुनो छोरा है बाबूजी, तुम देखोगे तो सातन तरे उंगलिया दबाई लेंगे।
0: अरे दांतों तले उंगलिया तो अब भी दबा रहा हूँ मैं। कब कहता हूँ कि वो बरह में रहता है, पर उसका घर है कहाँ?
1: जीवना जंत बाबूजी, तुम बाको घरे निवरिया के सामने।
0: ओ, ओ, दिमाग खराब कर दिया। अरे बाबा वो निवरिया कहाँ है?
2: क्यों ना यहां बाबू जी, इतनी सी बात ना यहाँ, वो घर घर के सामने नहीं बनिया है।
0: अरे यार बड़े अजीब आदमी से पाला पड़ा है। ये बताओ तुम्हारा दम्मो का घर और निवरिया कहाँ है?
2: ओह बाबू जी दोनों आम ही सामे ही, और कहूंगे।
0: अरे यार तुमने तो मेरा भेजा खराब कर लिया। तुम्हारा गांव का स्टेशन कहाँ है? तुम्हें ये बताओ तुम्हें किस स्टेशन पे उतरना है भाई?
2: अपने गांव के पास वाले स्टेशन पे उतरूंगा बाबू जी, और कहाँ उतरूंगा तुम बताओ।
0: तुम्हारा गाँव कहाँ है?
2: अरे बाबूजी स्टेशन के पास है गांव।
0: अरे तुम्हें किस स्टेशन पर उतरना है बाबा?
1: अरे बाबूजी अपने गांव के पास वाले स्टेशन पर उतरना है।
0: कहाँ है गांव तुम्हारा?
1: स्टेशन के पास है।
0: अच्छा अच्छा तुम ऐसे नहीं बताओगे। खैरों मैं पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाता हूँ। हाँ वो रहे इंस्पेक्टर। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ मैं आप ही को बुला रहा था, जरा इधर आइए।
3: अरे आया भाई आया।
0: अरे यार इन जरा बाबूजी को जरा देखो, इन बाबा साहब को जरा दिमाग ठिकाने लगाओ, दो घंटे से मेरा दिमाग खा रहे हैं।
3: कौन है, कौन बाबा है?
0: ये हैं, ये सामने खड़े हुए हैं आप।
3: अरे
1: अरे लल्लू,
3: अरे तुम कैसे आए? अरे वो टिकट के साहब क्या किया इन्होंने?
1: अरे लल्लू मैं तेरे पास ही तो जा रहे हो बाबू जी, मुझे जाई लल्लू से मिल लो है, जाई के मिलवे तक टिकट बनाए दो मेरी।
0: ओहो मुझे क्या मालूम था ये आपके पिताजी हैं। सॉरी लीजिए ये टिकट लीजिए और 10 रुपये 75 पैसे मुझे ये लाइए, ठीक है ना? आपको कष्ट हुआ
4: तो कोई बात नहीं, कष्ट की क्या बात है साहब, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मेरे पिताजी की वजह से आपको कष्ट हुआ।
0: नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा नमस्ते।
4: अच्छा
0: नमस्कार नमस्कार। हाँ भाई आप लोग टिकट निकाल लीजिए।

0: को है, कौन हल्ला कर रहा है, कौन है?
1: अरे बड़े सेना लगाए दीने तुमने तो चंपो के दादा
0: आओ।
2: अरे चंपो की मैया तो क्या खबर है मेरी, चार दिन आते तेरा मोड़ो ना दीसो तो पेट में बलैया सी कलाम।
0: अच्छा अच्छा बैठो, लो बैठ जाओ पीड़ा पे, बीजना ते तैयारी हवा कर दो। देखा है बेटी बेटान को मेरे नाती नातिन कैसे?
2: खूब खातिर करी मेरी तेरे नाती और नातनी ने। खबर तो
0: हाँ,
2: वे अपनी मेहतारी ते का कहते हैं?
0: मैयो कहता हूँ और का कहे।
2: अरे चंपो की मैयो, मैयो तो तुई है, वे मैया ते मैया नायक है।
0: वो का कहे बच्चा?
2: छोरा इनके छोरा पापा और मम्मी कहने लग गए।
0: अच्छा हमारे गांव में तो बच्चा पानी ते पापा के और सेरन में बाप ते पापा के।
2: अरे चंपो की
0: बारी उम्र के बच्चा तो जाठौर पे रोटी ते मम्मन के, पर सेरन में बड़े बड़े बच्चा मैया ते मम्मी के। ये तो तुम बड़े अजीब सी बात मुझे बता रहे चंपो।
2: अरे चंपो की मैया जो है सो जी अचरज की बात ना है, जो ते आगे और सुन।
0: का देख के आए हो तुम ऐसे अचरज की बात जो बता रहे हो?
2: चंपो की मैया बस शहर में बैयर तो मर्द के से कपड़ा पहने।
0: अच्छा
2: और मर्द बैयरन के से?
0: हाँ, जी ना
2: है मालूम पड़े कि जी मर्द है के कौन बैयर है कौन मर्द।
0: पड़ गई
2: और सुन।
0: और कहा देखो
2: ऊंची ऊंची एड़ीन के जूता पावन में पहर के।
0: अच्छा?
2: हाथ में सिगरेट और देख भाऊ दूल्हे हाथन में हाथ डार के आपस में मालूम
0: शरम ना लगे। शरम ना लगे चंपो के दादा?
2: अरे मां
0: आपतौली तुम ते शरम लगे।
2: अरे मां शरम है कौन जाने, वे तो आपस में
0: तो अपना छोरा तो ना करे ऐसी बात है।
2: अरे मां सब एक से है रहे हैं
0: तो भाऊ ने शर्म करी होगी चंपो के दादा के ना है।
2: भाई
0: मैं तो अब तौली करूं, बार मेरे सफेद रह गए सारे।
2: तो जी तो कह रहा हूँ चंपो की मैया के भाऊ पे तो तेरह परछाइयों पर हो है ना।
0: अच्छा,
2: तो जैसी भगवान के
0: तो
2: पाले
0: छोरा पे तो तुम पे ही परो होएगा चंपो के दादा। तुम तो अब तौली ठिटोली करो।

0: जी बहु दूल्हे आपस में कहा के तो मालूम है?
1: कहा के?
0: अरे तो ना पता सुन, मैं वो 3 दिन में सीख पायो, वो आपस में कहे डार्लिंग एक दूसरे से, क्या डार्लिंग बहुत दूल्हे थे डार्लिंग, दूल्हे बहुत डार्लिंग।
1: तो ये तो तुमने खूब
0: देख चंपा की भैया, मेरी बात चंपा की भैया, मैं तो डार्लिंग क्यों करूंगा, डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग क्यों करूंगा चंपा की भैया डार्लिंग।
2: तो भैया भैया आपने सुनी ब्रजभाषा झलकी चंपू के दादा, या को आलेख रहे हो श्याम सुंदर सुमन को, प्रस्तुति रही TN शर्मा की। और आओ भैया अब आनंद लें या ब्रज लोकगीत को।

चौधरी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज होगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

विनोद चतुर्वेदी के सुर में सुने आपने अभी ये लोकगीत। याई के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यही हुए है संपन्न। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नमस्कार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दे।
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
3: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
5: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
3: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रही हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6वें चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88

0: 5.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइन की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा।

0: पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वह भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्यभर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता में कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

आइए सुनते खुददार फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर दिया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। शब्द रचना राहत इंदौरी की है, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। शब्द रचना देव कोहली की थी, संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने।

0: श्रोताओ, ब्रजभूमि की जो पहचान है वो अनेक आयामों के लिए है, चाहे हम धर्म की बात करें, आध्यात्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, उसमें ब्रज की भूमि को जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। ब्रज की जब हम बात करते हैं तो 12 वन 14 उपवन की बात होती है। तो ये भूमि गोचर भूमि है, वन भूमि है, इसीलिए शायद ब्रज भूमि भी है। तो क्या कुछ जैव विविधता यहाँ की रही और आज वो किस रूप में दिखती है, ये तो साथ साथ बात करेंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए पर्यावरण की भी बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोफेसर शिवराज भारद्वाज जी हैं। यूँ तो आप फिजिक्स को देखते हैं, लेकिन एक निजी इनका जो प्रेरणा कहें, निजी एक बोध कहें, वो जैव विविधता और पर्यावरण को लेकर भी है। ब्रज में काफ़ी उन्होंने उसको देखा और समझा भी है। शिवराज जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो जब जैव विविधता की बात चलती है तो हाँ, सामान्यतः आदमी उसको एक हाँ, अलग उसमें देखता है, तो एक व्याख्याता के नाते, एक शिक्षक के नाते थोड़ा सा सामान्य व्यक्तियों को बताएं कि जैव विविधता वास्तव में है क्या।
1: निश्चित रूप से जैव विविधता ब्रज क्षेत्र के लिए एक नया सा शब्द है। लोगों को थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है कि जैव और विविधता आखिर है क्या। तो जैव माने जीवन और विविधता माने वैरायटी, भिन्नता,
0: भिन्नता जी।
1: और जैव माने जीवन का अर्थ जीवों से, पशु पक्षियों से, फल फूलों से, पेड़ों से, वृक्षों से, जहां पे भी जीव है उसके विभिन्न आयामों की भिन्नता क्या है, वो भिन्न भिन्न तरीके से हमारी प्रकृति में किस प्रकार मौजूद है। तो ये पेड़ हैं, पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, या अन्य जीव जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इनका जितना विविध स्वरूप हमारी प्रकृति में देखने को मिलता है उतना अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। यद्यपि जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो वेस्टर्न घाट माना जाता है, और वेस्टर्न घाट इसलिए माना जाता है क्योंकि वेस्टर्न घाट गुजरात की सीमाओं से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है।
0: गुजरात, महाराष्ट्र, उधर की बात कर रहे हैं। जी।
1: तो वेस्टर्न घाट माना जाता है। दरअसल जैव विविधता के लिए आवश्यक है उच्च तापमान और पर्याप्त बरसात। तो जब पर्याप्त बरसात और उच्च तापमान होता है तो उस स्थिति में अधिक पेड़ पौधे उगते हैं, और जब अधिकाधिक पेड़ पौधे उगते हैं तो उसी हिसाब से जीव जंतु भी वहां पर पैदा हो जाते हैं।
0: मतलब आप ये कह रहे हैं कि जीव जंतु, पेड़ पौधे और हमारा जो परिवेश है
1: जी,
0: वो ही हमारा जैव विविधता को समाहित किए हुए है, उसमें सब कुछ आ जाता है, हम स्वयं भी उसके हिस्सा है और स्वयं भी उसके घटक है उसमें। मैं अगर इसको थोड़ा सा, जैसा आपने कहा तापमान की बात की, वन की बात की, तो कभी जो ब्रज भूमि रही होगी, यहाँ बरसात की भी अधिकांशता रही, पशुपालन यहाँ का मुख्य पेशा रहा, तो निश्चित तौर पर यहाँ विविधता तो रही होगी इसमें, लेकिन आज वो चीज़ें शायद दिखाई नहीं देती। यहाँ उस तरह का वो भी है, तो यहाँ उस तरह की न सही वेस्टर्न घाट की, लेकिन विविधता यहाँ जरूर रही होगी उसमें, ऐसा हम मान सकते हैं इसमें।
1: ये हमारा ब्रज जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही धनाढ्य है
0: जी।
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रज में, ब्रज जो हमारा है वो यमुना के लिए जाना जाता है
0: जी। जी,
1: ब्रज हमारा इस यमुना की 7 सहायक नदियां हैं, उनके लिए जाना जाता है
0: जी। जी,
1: जिसमें करवन है, सेंगर है, सिरसा है, बाणगंगा है और गंभीर आदि यमुना की सहायक नदियां हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ब्रज के 12 वन हम बहुत भलीभांति परिचित हैं
0: जी। जी,
1: मधुवन है, तालवन है, कुमुद वन है, बहुला वन है, काम वन है, खादिर वन है, वृंदावन है, ये 7 वन यमुना के पश्चिमी किनारे पर उपस्थित है। और 5 वन जिसमें भद्रवन, भांडीर वन, वेल वन, लोह वन और महावन, ये यमुना के पूर्वी तट पर उपस्थित है
0: जी। जी, जी।
1: तो ये वनों का मतलब ये है कि ये वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र
0: भूमि रही है।
1: हाँ, वृक्षों से

कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति के युगल स्वरों में अभी सुना आपने दलाल फिल्म का ये गीत। शब्द अनजान के थे, संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बातचीत ब्रज की जैव विविधता और पर्यावरण। शिवराज भारद्वाज से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।

0: होंगे, वहां पर पेड़ पौधे होंगे, वहां पर जीव जंतु स्वतः ही पैदा होंगे।
1: बिल्कुल सही।
0: और जब जीव जंतु स्वतः पैदा होंगे तो जीव जंतु अब दो तरह के हो सकते हैं, एक फलाहारी भी हो सकते हैं, एक मांसाहारी भी हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस प्रकृति के चक्र को पूरा करने के लिए फलाहारी जीव जंतुओं की भी आवश्यकता है और मांसाहारी जीव जंतुओं की भी आवश्यकता है। अब जैसे चूहा है तो सांप है, सांप और चूहे में आपस में बैर होता है, तो वो संतुलन बनाए रहते हैं।
1: जी जी जी जी, वो चक्र तो प्रकृति का पूरा होना ही चाहिए उसमें।
0: ब्रज के पहाड़ हैं, गोवर्धन की पहाड़ी है, हमारे पांच पहाड़ हैं, पांच पहाड़ों के बारे में संत हुए जगत नंद, उन्होंने लिखा गोवर्धन नंदगांव और बरसाना काम, चरण पहाड़ी पांच ये जगत नंद अभिराम। पांच पहाड़ियां हैं, गोवर्धन की पहाड़ी, नंदगांव की पहाड़ी, बरसाना की पहाड़ी और काम की पहाड़ी, कामा की पहाड़ी, चरण पहाड़ी पांच है। तो ये जो आनंद देने वाली है प्रकृति का जो आनंद है इन पहाड़ियों की वजह से है।
1: निश्चित तौर पे आपके जैसे आपने कहा नदी है, नदियों की सहायक नदियां हैं, पहाड़ है, वन है, तो अपने आप में जैव विविधता तो यहाँ होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: और इतना सुंदर वर्णन
1: जी जी
0: जैव विविधता का हमारी श्रीमद् भगवद गीता में भी बहुत किया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और श्रोता लोग बड़ा आनंद से सुनते हैं। और भगवान कृष्ण जब यहाँ से चले जाते हैं और उद्धव को भेजते हैं कि भाई तुम जो जाओ हमारा संदेश दे आओ,
1: जी जी,
0: तो वहां पे भी जो है उनको जब लौट के जाते हैं उद्धव तो कहते हैं उदो मोहि ब्रज बृषत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। तो ये क्या है, ये विविधता है, ये
1: विविधता है,
0: विविधता है,
1: जिसको साक्षात ईश्वर भी स्मरण कर रहे हैं।
0: हंस सुतासी सुंदर नगरी और कुंजन की छाही, बैसुर भी वह छंद दोहिनी खरिक दोहावन जाही। मतलब गाय भी हैं, पशु भी हैं, इसमें इसमें जो है नदी भी हैं, नाले भी हैं, वन भी हैं, उपवन भी हैं, लताएं हैं, पताएं हैं, तो ये सब क्या है।
1: निश्चित तौर पर जैव विविधता रही है तो फिर सांस्कृतिक विविधता, पर्यावरणीय विविधता, लोगों के खान पान की, व्यवहार की, वो सब विविधताएं तो इससे जुड़ी हुई रही हैं। इसको हम आज भी अपने व्यवहार में देखते हैं कि जितनी विविधता हमारी सांस्कृतिक, भाई ब्रज के आयामों की जब हम बात करते हैं तो वो अध्यात्म और उससे शिखर योग से लेकर के और लोक जीवन और लोक व्यवहार तक आता है उसमें। हाँ, तो जितनी विविधता यहाँ है, जो 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण ने जो यहाँ अपना वो किया, तो मैं समझता हूँ शायद उससे ज्यादा कहीं कुछ मिलता नहीं है, ब्रज से ज्यादा कहीं कुछ देखने
0: नहीं
1: को
0: ब्रज में जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही उचित स्थान है, जहाँ का तापक्रम भी बहुत ठीक रहता है,
1: जी जी,
0: और जहाँ पर पानी की भी पर्याप्त मात्रा रहती है, इसीलिए ये जो है वनों का क्षेत्र है। बाकी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह से वन नहीं है,
1: वन नहीं है जी,
0: पहाड़ नहीं है।
1: हाँ हाँ।
0: और यहाँ के वनों का तो यह हाल है कि इतने जितने भी प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं सब यहाँ ब्रज में पाए जाते हैं।
1: जी जी।
0: अकोल, अगस्त, अनार, अमरूद, अमलतास, अस्सी, अरुआ, अशोक, आम, ऐसे हजारों पेड़ जो आप देखेंगे कि इस ब्रज की धरा पर उपस्थित है,
1: जो संपूर्ण भारत भूमि में वो ब्रज में
0: ब्रज की धरा पर उपस्थित हैं, तो इनकी वजह से जीव जंतु भी जो है पैदा होते हैं और वो सब एक साथ रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलकर के जब एक साथ रहते हैं तो उसको कहते हैं जैव विविधता। और ये तीन प्रकार की हो सकती है,
1: जी जी जी।
0: एक प्रजाति जैव विविधता हो सकती है। प्रजाति जैव विविधता में के अंदर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु एक साथ रहते हैं। जैसे जंगल है उसमें हाथी भी रह रहा है, घोड़ा भी रह रहा है, शेर भी रह रहा है, चीते भी रह रहे हैं, बंदर भी रह रहे हैं, आदमी भी रह रहे हैं। ये प्रजाति है, विभिन्न प्रजातियां हैं लेकिन सब एक साथ रह रहे हैं, तो ये हुई प्रजाति जैव विविधता। एक अनुवांश की जैव विविधता, अनुवांश की जैव विविधता का अर्थ ये है कि जो कहना चाहिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोग तो हैं लेकिन उनकी रूप रंग और वेशभूषा की वजह से
1: जीनोटाइप अलग बदल गया,
0: बदल गया।
1: जी जी जी।
0: तीसरा परिस्थिति की जैव विविधता है। परिस्थिति जैव विविधता का मतलब ये है कि अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्थलीय जगह है, अब जहाँ पे

0: मरुस्थल है वहां की जैव विविधता अलग होगी, वहां
1: पहाड़ की
0: पर
1: अलग हो
0: पहाड़ की
1: जाएगी।
0: अलग हो जाएगी, सागर हैं वहां की अलग हो जाएगी। और अगर हम लद्दाख की तरफ जाएंगे जहां पर हिमाच्छादित जो है बर्फ पड़ी हुई है, तो वहां की जैव विविधता अलग हो जाएगी। तो ये पारिस्थितिकी जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता और प्रजाति जैव विविधता, तीन प्रकार की जैव विविधताओं में हम इसको बांट सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष 22 मई को सन 2000 के बाद अंतर्राष्ट्रीय विश्व जैव विविधता विश्व दिवस मनाया जाता है। ये इसका प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ था तो उसमें ये
1: ये
0: प्रस्ताव
1: रखा
0: किया
1: गया
0: गया। हाँ
1: इसमें
0: जी,
1: तो। जी
0: हाँ
1: जी
0: जी
1: जी तो कुल मिलाकर के अब थोड़ा सा मैं इसमें इस एक व्यवहार पक्ष की तरफ लेके जाऊं इसमें,
0: जी
1: कि रही है जैव विविधता, लेकिन आज जब हम इसको देखते हैं तो आज जनमानस को उससे जुड़ करके इसके संरक्षण संवर्धन के लिए, इसको बनाए रखने के लिए क्या कुछ अभी कुछ किया जाना आवश्यक
0: बहुत
1: है
0: बहुत
1: इसमें?
0: बहुत कुछ
1: क्योंकि अब वो
0: बहुत कुछ।
1: चीजें शायद खो रही
0: वास्तविकता यह
1: हैं।
0: है कि जो हमारा पुराना स्वरूप था ब्रज का,
1: जी
0: लताओं का, पताओं का, फूलों का, वनों का,
1: जी
0: जंगलों का, तालाबों का, नदियों का, पहाड़ों का,
1: हाँ, अब
0: वो,
1: जिस
0: हाँ,
1: कुंज निकुंज की बात हम करते
0: तो
1: हैं
0: वो
1: तो
0: जो है लुप्त प्राय सा होता जा रहा है।
1: जी जी जी
0: और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम यहाँ पे प्रतिवर्ष भारी संख्या में वृक्षारोपण करें, और जो कृषि भूमि है वो जो बढ़ती जा रही है, जिससे जीवांश जो है समाप्त होते जा रहे हैं। जब जीवांश समाप्त होते जाएंगे तो नए पेड़ पौधे उसमें नहीं होंगे, नए
1: जी
0: कीड़े पतंगे नहीं उसमें
1: जी जी जी
0: पैदा होंगे। तो जो बढ़ती हुई कृषि भूमि का विस्तार जो हो रहा है उसे भी हमें रोकना होगा। कीटनाशक जो दवाओं का भारी मात्रा में प्रयोग हो रहा है उसको भी हमें रोकना होगा।
1: जी, मतलब
0: और
1: प्रकृति की तरफ, प्राकृतिक संसाधनों की तरफ, प्राकृतिक क्रियाकलापों की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। जीवन को नैतिक और जीवन को प्राकृतिक बनाना होगा ताकि हम उन चीज़ों को संरक्षित कर सकें जो आज कम से कम इस रूप में है, तो वो तो बनी रहे, उसमें कुछ हम गुणात्मक और जोड़ सकें, ये व्यवहार की बात है। लेकिन नदी है तो नदी
0: स्वच्छ रहनी
1: स्वच्छ रहनी
0: चाहिए,
1: चाहिए, पहाड़ है
0: उसमें
1: तो
0: पानी
1: संरक्षित
0: का
1: रहना
0: पर्याप्त
1: चाहिए।
0: प्रवाह रहना चाहिए,
1: जी
0: नदी में जो जीव जंतु पैदा होते हैं वो बराबर बने रहने चाहिए, उनकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त नहीं होनी चाहिए, जो हमारे जीवांश हैं पृथ्वी तल पर जो है, जो जंगलों में और पेड़ पौधों में जो होते हैं वो यथावत बने रहने चाहिए। उसके लिए हमारा जो नैतिक चरित्र है
1: जी
0: उसको भी हमें ऊपर उठाना पड़ेगा, और जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो उद्भव होना है ब्रज के नाते, उसको हमें आगे बढ़कर के इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। तभी
1: तभी
0: संभव है कि
1: हम
0: हम जो है एक स्वच्छ
1: और
0: और एक
1: सुंदर ब्रज,
0: अच्छा सुंदर ब्रज बना पाएंगे और एक श्रेष्ठ पर्यावरण बना
1: उसके
0: सकेंगे।
1: संरक्षण
0: और
1: को।
0: जब तक पर्यावरण हमारा श्रेष्ठ नहीं,
1: जी
0: दरअसल जैव विविधता और पर्यावरण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी उतना ही अच्छा पर्यावरण होगा,
1: जी
0: और
1: जी
0: जितना ज्यादा अच्छा पर्यावरण होगा उतनी ही अच्छी जैव विविधता होगी।
1: जी जी और ये दोनों ठीक
0: अब
1: रहेंगे तो
0: दोनों
1: एक मानवीय जीवन है
0: तो
1: वो
0: मानवीय जीवन
1: भी
0: है वो
1: फलीभूत
0: श्रेष्ठ
1: होता
0: होगा।
1: रहेगा।
0: हाँ
1: उसमें इसमें निश्चित तौर पे हमें अपने जीवन को कम से कम प्रकृति में बनाना होगा, प्रकृति के जो उपादान है उनको संरक्षण देना होगा, और एक ऐसा जीवन जिसमें, जिसे कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार की जो भावना है
0: जी
1: उसको अगर हम स्थापित कर पाएंगे तो
0: बिल्कुल,
1: शायद हम ब्रज की उस जैव विविधता को
0: जो
1: भी बचा
0: हमारी
1: सकते
0: सांस्कृतिक
1: हैं।
0: मान्यताएं
1: जी
0: हैं
1: जी
0: उनके साथ चलना होगा।
1: जी
0: फूल
1: जी
0: पेड़ों को पूजना होगा,
1: जी जी
0: नदियों को पूजना
1: पूजना
0: होगा,
1: होगा, सही
0: पहाड़ों
1: बात
0: को
1: है
0: पूजना होगा,
1: जी।
0: होली को बनाना होगा।
1: तो श्रोताओं, आप थे श्री शिवराज भारद्वाज जी और आप जानकारी दे रहे थे जैव विविधता के संदर्भ में। सर, आप आए और अपने विचार और वाणी से
0: नहीं,
1: हमारी हमारे श्रोताओं
0: मुझे
1: को,
0: बड़ी खुशी हुई
1: जी
0: आपने
1: जी आपका
0: बुलाया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो अभी आपने सुनी ये बातचीत ब्रज की जैव विविधता और पर्यावरण, शिवराज भारद्वाज से भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीरनगर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
1: संत कबीरनगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में बुजुर्गों के सम्मान की एक नई मिसाल पेश की। ट्रेजरी कार्यालय के निकट नवनिर्मित पेंशनर कक्ष का उद्घाटन जिलाधिकारी ने जनपद की सबसे बुजुर्ग पेंशनर 95 वर्षीय दुलारी देवी से फीता कटवाकर कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने दुलारी देवी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कक्ष के बनने से अब पेंशनर को कलेक्ट्रेट आने पर बैठने और आराम करने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी त्रिभुवन लाल और पेंशनर संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन की संवेदनशीलता की सभी पेंशनर ने सराहना की है। संत कबीर नगर जनपद की प्रभारी मंत्री और प्रदेश की राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने बीते दिनों खलीलाबाद स्थित डाक बंगले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में महिलाओं के अधिकार संबंधी बिल पेश किए जाने के दौरान राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह की टिप्पणी की और मजाक उड़ाया वह देश की आधी आबादी के लिए काला दिन था। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने महिलाओं के अधिकारों को संसद में छीनने का प्रयास किया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं जन आक्रोश के साथ वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर इस गठबंधन को खदेड़ने का काम करेंगी। संत कबीरनगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने तहसील खलीलाबाद के ग्राम पंचायत पटखौली में रवि वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सीसी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में संपन्न हुआ। डीएम की मौजूदगी में चयनित किसान शैलेश कुमार के गाटा के दायरे में फसल की कटाई कराई गई, जिसमें कुल 19.700 किलोग्राम प्लाट उपज प्राप्त हुई। इस आधार पर क्षेत्र में गेहूं की औसत पैदावार 45.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई। संत कबीर नगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 1600 का लक्ष्य मिला है, जिसे बैंकों को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स और जिला समन्वयकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों को निपटारा 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लीड बैंक मैनेजर पवन कुमार सिन्हा को उद्योग विभाग की योजनाओं का लगातार फॉलो अप करने के निर्देश दिए गए। संत कबीरनगर जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक की। वर्ष 2026-27 के लिए जिले को मिले 1600 के लक्ष्य को बैंकों को भेजते हुए डीएम ने लंबित ऋण आवेदनों को 1 सप्ताह में निपटाने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले अग्रणी जिला प्रबंधक पवन कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रसाद और युवा उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स परिसर में निर्माणाधीन आधुनिक जिम एवं गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का ही उपयोग किया जाए और मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पुलिसकर्मियों को जल्द ही इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने जिम में आधुनिक फिटनेस उपकरण उपलब्ध कराने का, गेस्ट हाउस में बेहतर वेंटिलेशन, स्वच्छता और भविष्य के लिए रखरखाव आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। संत कबीर नगर जनपद में कानून व्यवस्था और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा और जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बैरक, मेस और पूरे जेल परिसर की सघन चेकिंग की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कैदियों से सीधे वार्ता कर उनकी समस्याओं और मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि जेल के अंदर किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं जानी चाहिए और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता व सही तरीके से करें। साथ ही जेल परिसर की साफ सफाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। औचक निरीक्षण के बाद जिला कारागार में कैदियों के हुनर और सुधार की दिशा में एक नया कदम बढ़ाते हुए नवनिर्मित बेकरी का फीता काटकर भव्य उद्घाटन भी किया गया। इस पूरे निरीक्षण उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, PRO PK गुप्ता सहित अन्य जेल अधिकारी और भारी

0: संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
1: संत कबीरनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
2: झांसी में मई के महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने पर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल और खेल एकेडमी के समय में बदलाव किया गया। खुले मैदान में दोपहर के समय खेल गतिविधियों पर रोक लगाई गई तथा बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। नगर निगम द्वारा प्रमुख चौराहों पर प्याऊ शीतल जल केंद्र और छायादार शेड लगाए गए। प्रदेश के कई शहरों की तरह झांसी में भी गर्मी से राहत के लिए सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए विशेष हेल्पलाइन और चिकित्सा व्यवस्था सक्रिय रखी। जिला अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर झांसी को औद्योगिक और ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं को गति मिली। झांसी सोलर पार्क परियोजना तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर कार्य आगे बढ़ा। शासन स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहा। झांसी मंडल में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास भी जारी रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्गों की मरम्मत तथा शहर के यातायात प्रबंधन को लेकर कई योजनाओं पर काम तेज हुआ। शहर में ट्रैफिक सुधार और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान को और गति दी गई। वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षण किए गए तथा खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही हुई। शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की निगरानी बढ़ाई। कई गांवों में टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की गई। खराब हैंडपंपों की मरम्मत तथा पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया। शिक्षा विभाग की बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले विद्यालयों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन अभियान को गति दी गई ताकि इस नए शैक्षिक सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। कृषि क्षेत्र में किसानों को गर्मी और सूखे की स्थिति से बचाने के लिए कृषि विभाग ने सलाह जारी की। किसानों को कम से कम पानी वाली फसलें, सिंचाई प्रबंधन और पशुओं की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिले में जल संरक्षण और तालाब पुनर्जीवन अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। मनरेगा के अंतर्गत तालाबों की सफाई और ग्रामीण जल संरचनाओं के संरक्षण का कार्य जारी रहा। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय रहा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों और कॉलेजों में महिला हेल्पलाइन और साइबर सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर सेल द्वारा लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह दी गई। पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। धार्मिक और सामाजिक आयोजन को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट रहा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई भी चर्चा में रही। खेल गतिविधियों की बात करें तो झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में क्रिकेट, हॉकी और एथलीट प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी रहा। भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह के समय अभ्यास कराने की व्यवस्था की गई। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई और प्लेटफॉर्म प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधाएं बढ़ाई गईं। स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग और साफ सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं। युवा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार की निवेश और विकास योजनाओं के तहत बुंदेलखंड को विशेष प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। सड़क, ऊर्जा, सिंचाई और औद्योगिक परियोजना को गति देने पर जोर दिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च भी किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी गई। गर्मी और जल संकट के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई अभियान चलाए गए।
1: ये था

0: आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आबोहवा के अंतर्गत वार्ता, पर्यावरण प्रदूषण और मनुष्य। वाचन कर रहे हैं डॉक्टर सुदेश अहूजा।

0: श्रोताओं, प्रकृति प्रारंभ से ही हर जीवधारी की आवश्यकता की पूर्ति करती रही है। प्रकृति मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए है। मनुष्य के चारों ओर जो वन संपदा, पशु संपदा, खनिज संपदा, जल समूह एवं वायुमंडल का जो आवरण है, वही पर्यावरण है। मनुष्य व संपूर्ण प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करना ही पर्यावरण का क्षेत्र है। हमारे आसपास के वातावरण की शुद्धता व स्वस्थता पर ही मनुष्य का अस्तित्व व विकास निर्भर करता है। मनुष्य व प्रकृति का संबंध मनुष्य के प्रारंभिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। प्रकृति में वायु, जल, वनस्पति, वन, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, आकाश, नक्षत्र, प्राणी जगत, पशु पक्षी और चराचर जगत की अनेक वस्तुएं सम्मिलित हैं। मनुष्य को जब ये जानकारी मिली कि उसकी सुख समृद्धि का सारा खजाना प्रकृति में छिपा हुआ है, तो प्रकृति के इस खजाने को पाने के लिए मनुष्य ने अति कर दी। मनुष्य ने अपने लोभ के कारण वृक्षों को काट डाला और धरती को खोद डाला। इसमें मनुष्य के सामने प्रदूषण, पर्यावरण अशुद्धि तथा जीवन का संकट आदि अनेक समस्याएं पैदा हो गई। तय है कि आज मनुष्य यानी हम सब ने मिलकर ही प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। श्रोताओं, मनुष्य प्रकृति के प्रति प्रेम व संवेदनशीलता खत्म हो गई है और वह उसका दुरुपयोग करने लगा है। इससे प्रकृति का स्वाभाविक संतुलन बिगड़ गया है। आज जल का प्रदूषण अनेक बीमारियों का कारण है और हमारे प्राण ले रहा है। अनेक जलीय जंतुओं की प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण नष्ट हो गई हैं। वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। धरती के प्रदूषण ने भूमि की उर्वरा शक्ति छीन ली है और कीटनाशक दवाओं के
1: आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता पर्यावरण प्रदूषण और मनुष्य। वाचन कर रही थी डॉक्टर सुदेश आहूजा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रही हैं सुरभि शर्मा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं बड़ी बेसब्री से इंतजार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी। श्रोताओं, हमारा जीवन एक बहते हुए पानी की तरह है, अगर वो बहता रहे तो जीवन सही चलता है, वहीं अगर वो रुक जाए, वो थम जाए, तो जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर हम लोग पुरानी बातों में उलझकर बैठ जाते हैं। हम अपने बीते हुए कल में अपने जीवन को इतना जीना शुरू कर देते हैं कि अपने भविष्य और अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। प्रभु का दिया हुआ जीवन बेहद खूबसूरत है, फर्क है सिर्फ हमें से कैसे जीना चाहिए। पुरानी बातों में उलझकर, पुरानी गलतियों में रहकर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वर्तमान हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने वर्तमान को सुधारना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी पुरानी चीज़ों को भूलना होगा। कहते हैं ना, जो बात गई सो बात गई, यानी कि जो रात निकल गई वो बात चली गई। सुबह उठकर एक नई शुरुआत करें। आज सोचें कि जो पहले हो गया सो हो गया, उन गलतियों से हमें सबक लेना है और हर दिन एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है।

0: अशु, तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पूरे जनपद में गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में कई तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है और ख़ासतौर से हमारे मथुरा में जो गर्मी है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही, कई तरह की बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। इन्हीं सारे विषयों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर आर के चतुर्वेदी यहाँ रघुराज नर्सिंग होम मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर्ड हूँ। लगभग 18 साल पहले मेरा रिटायरमेंट हुआ। तो मैंने हीट स्ट्रोक की समस्या जिला अस्पताल में भी और यहाँ भी, इन दिनों ख़ास तौर से मई जून दो महीने ऐसे होते हैं जिसमें हीट स्ट्रोक की समस्या ज़्यादा होती है।
2: हीट स्ट्रोक है क्या सर?
1: हीट स्ट्रोक एक तरह से आप कहना चाहिए कि हीट का बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाना। जो हमारा टेम्परेचर सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है।
2: क्या हीट स्ट्रोक को हम अगर सरल भाषा में कहें लू लगना, क्या ये सही?
1: हाँ, सरल भाषा में लू लगना कहें, लेकिन लू लगने के अलावा हीट स्ट्रोक की और भी प्रॉब्लम से जुड़ी चीजें होती हैं।
2: यानी ये लू जैसे लगने से सडन बीमारी है,
1: सडन आइजा आपको ठंडे से गर्म में आ जाना एकदम से, उसमें हीट एग्जॉस्ट हो जाता है। तो वो जो हीट की समस्या है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के बैलेंस को बिगाड़ देती है और उसमें जो लक्षण शुरू होते हैं उन लक्षणों में चक्कर आना, उल्टी हो जाना, एकदम से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना और कभी कभी हार्ट पे भी अफेक्ट हो जाना, इस तरह की समस्याएं जनरली देखने को मिलती हैं। और बहुत से लोग इन समस्याओं को समझ भी नहीं पाते हैं और जाने भी जा रही हैं। तो इसलिए हीट स्ट्रोक के लिए या लू लगने के लिए या गर्मी से बचाव के लिए मई जून में ज़्यादातर लोगों की ये जानकारी में होना चाहिए कि हमको इस गर्मी से जो हमारे एवरेज से बहुत ज़्यादा हो रही है उससे अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे बचाना है और जो जानकारी लोगों को नहीं है उनमें इसकी जानकारी कैसे देना है।
2: आपने बताया सर, इससे हमारी जान भी जा सकती है। ये इतनी भयंकर स्थिति है कि जरा सी लापरवाही व्यक्ति की जान पर बना सकती है।
1: ये इतनी भयंकर स्थिति है कि तो इससे ऐसा लगता है कि लोगों को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, बचाव के तरीके नहीं पता है। सबसे बड़ा तरीका तो ये

0: है कि आपको जो मैक्सिमम हीट का टाइम होता है, रादर कहना चाहिए 11-12 बजे से लेके 3-4 बजे तक, उसमें घर बेहद जरूरी ना हो, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए घर से, और छाया में रहना चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर के कपड़े नहीं हो, सर कभी खुला नहीं रहना चाहिए, जब भी बाहर निकले उसमें कोई अंगोछा गमछा या कोई कैप या कोई टोपी इस तरह का ऐसा जरूर इस्तेमाल करें। साथ में हमेशा पानी की बोतल भी रहनी चाहिए। ये इसकी सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो हैं। लेकिन मथुरा एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान से इन दिनों बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। सुबह का किस्सा है, 2.5 साल के बच्चे को यहाँ हीट स्ट्रोक में लेके आए, उनको समझाया कि भाई इसको कोल्ड स्पंजिंग अभी तुरंत करो, नहीं तो ये बच्चा कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर 105 106 हो जाता है, और उसमें दिमाग का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जो दिमाग का कंडेंसर सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर इंसान को ये जानकारी नहीं है कि ये लक्षण किस बीमारी के हैं, तो उनसे बचाव वो कैसे कर सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: पहले उनको ये पता होना चाहिए कि हम इस तेज धूप में निकल के आए हैं, तो हमको ये संभावना है, और इसके बचाव के तरीके हैं कि जो आपकी बॉडी से इवेपोरेट हो रहा है पानी, उसको लगातार ऐसा रिप्लेनिश करें, आप लगातार पानी पिएं, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, लस्सी छाछ इस तरह की चीजें आप ऐसा जितनी ज्यादा लें, पानी की प्यास न होने पर भी पानी पिएं, मतलब
1: बहुत
0: इसकी
1: उपयोगी
0: बेसिक
1: बात बोली आपने, पानी की प्यास ना
0: न
1: होने पर
0: होने
1: भी
0: पर
1: पानी
0: भी पानी
1: पिए।
0: पिएं, जिससे आपको पानी का अभाव शरीर में न हो। पानी के अभाव के लक्षण ही ये सारे होते हैं, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम है तो वो ऐसा पसीने के साथ निकल जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, तो आपको वो चीजें भी इसमें आ जाती हैं, चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसा खड़े खड़े आदमी मालूम पड़ा चक्कर आया, गिर गया, बीपी एकदम डाउन हो गया, वो ऐसा या एकदम से हीट उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसी जो स्थिति है उन स्थितियों से बचने के लिए सारे लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले इसकी ये जानकारी रहनी चाहिए कि अगर हीट स्ट्रोक हो तो उसके क्या लक्षण हैं और क्या बचाव है। बचाव में जो बेहद जरूरी चीज है वो बगैर काम के घर से बाहर 11 से 3 और 4 बजे के बीच में न निकलें। छोटे बच्चों को बिल्कुल निकालें, बूढ़ों को न निकलने दें, ऐसी स्थिति न लाएं कि आपको फिर इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल जाना पड़े। उसके बाद फिर आपको हमेशा अपने साथ पानी रखना है, लिक्विड पीते रहना है, अपने शरीर को ठंडा रखना है, या अपने शरीर को ढक के रखना है, सफ़ेद ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनने हैं, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, आजकल का जो फैशन है टाइट कपड़ों का है, ढीले कपड़े होने चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी का मेंटेन होना चाहिए। जैसे लोग बाग इन दिनों नारियल पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, तो उसमें सोडियम की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा और ग्लूकोज की मात्रा ये बैलेंस रहनी चाहिए। इसके लिए सबसे सस्ता उपाय है कि अपने पास एक छोटा पाउच ORS का भी रखें, तो उसमें कोई आपका नुकसान नहीं होता है, बोतल पानी की आप उसमें डाल लें, उसको पीते रहें, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी लॉस नहीं होता है और उसके लक्षण से आप लड़ सकते हैं। इसके अलावा 46, 47, 48 जो टेम्परेचर हो रहा है, इसको इंसान की बॉडी नहीं टॉलरेट कर पाती है, झेल नहीं पाती है, और बैलेंस टेम्परेचर का बॉडी का जल्दी बिगड़ता है, इसलिए इसको बहुत जल्दी पहचान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी मेडिकल एड ले लेनी चाहिए, और ज़्यादा धूप हो तो उसमें छायादार उसमें रहना चाहिए, धूप में फिर नहीं निकलना चाहिए, या पेशेंट जो है उसको नहीं निकालना चाहिए। ये इसकी मेनली जो मेजर सिम्टम है वो यही है, चक्कर आना, सर दर्द होना, उल्टी हो जाना, अकड़न आना और चक्कर खा के गिर जाना, ये लू की खास तौर से पहचान है, और इससे बचाव के तरीके यही हैं, कम से कम बाहर निकलना, हल्के कपड़े पहनना, ढीले कपड़े पहनना, सर हमेशा

0: के रखना, साथ में पानी रखना, ये चीजें आपको लू से बहुत कुछ बचा सकती है। लेकिन जो हालात हैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें बुंदेलखंड और प्रयागराज और तीन डिवीजनों में ही 90 लोग मर गए, तो ये जो हालात बन रहे हैं ये थोड़ी सी लोगों की गैर जानकारी की वजह से और मजबूरियों की वजह से। काम पे निकलने आया आदमी, काम पे जा रहा है, इसमें इतनी हीट में काम कर रहा है, उसमें उसको हीट स्ट्रोक वहीं हो जाता है साइट पे, वो नहीं आई जब मेडिकल एड मिलती है खत्म हो जाता है।
1: खासतौर से मजदूर वर्ग है, जो गरीब
0: मजदूर वर्ग भी है, जो धूप में ड्यूटी करने वाले लोग भी हैं,
1: टूरिस्ट है, वो तो गर्मी की
0: टूरिस्ट है, वो घूम रहे हैं 2 बजे घूम रहे हैं मथुरा में, अब उनको समझाया गया आप इस धूप में इतने बच्चों को लेके आप घूम रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है, आप कम से कम 2-3 घंटे या तो होटल में जहाँ रुके वहाँ रुके रहे, शाम के 4 बजे बाद निकले। लेकिन बहुत से लोगों की मजबूरियाँ, हमारी ट्रेन है, हमारा ये हमारा, तो इस तरह से इन दिनों बाहर की घूमना प्लान करना चाहिए कि धूप में कम से कम निकले।
1: अक्सर ऐसा होता है कि ये हीट स्ट्रोक की समस्या कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में ट्रैवल कर रहा है, अचानक उसके साथ स्थिति आ जाए बीच रास्ते में, तब उसे क्या करना चाहिए?
0: तो उसको यही है कि अगर ज़्यादा कंडीशन खराब हो रही है तो उसको मेडिकल एड लेनी चाहिए, वरना ये पानी, नींबू पानी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लें, और अगर टेम्परेचर हो जाए तो उसकी कोल्ड स्पंजिंग कराएं, टेम्परेचर को दिमाग में बढ़ने न दें, सर पे ठंडे कपड़े रखें, ये उस समय इमीडिएट उसको करना चाहिए।
1: कोल्ड स्पंजिंग का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, कोल्ड स्पंजिंग से हमारा
0: कोल्ड स्पंजिंग ये है कि आपको अगर पानी मिल जाए तो उसमें थोड़ी बर्फ़ डाल लें, बर्फ़ नहीं मिले तो ठंडा पानी मिले, उसको भिगो के सारे शरीर में उससे पहुँचें या उसको शरीर पे पानी को डालें, जिससे जो टेम्परेचर है उतनी हाई ना होके एक लेवल पे आ जाए, वरना वो आपको डैमेज कर देता है, हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है, तो उससे आदमी ख़त्म भी हो सकता है। और हीट स्ट्रोक में बहुत से लोग बहुत तेज बुखार से ख़त्म हो जाते हैं।
1: जी, यानी टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, उससे उनकी जान भी जा सकती है। इस मौसम में खासतौर से हीट स्ट्रोक के समय भी खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या
0: खाने पीने में सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, फल खाएँ, बासा खाना नहीं खाएँ, प्रोटीन की चीज़ें कम खाएँ और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें, हरी सब्जियां लें, फल लें, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें, और हैवी खाने नहीं खाएं, फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं लें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप जितना ज़्यादा पानी लेंगे, जितना ज़्यादा वो लेंगे, बॉडी उतनी ज़्यादा रजिस्ट कर पाएगी।
1: कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जैसे सेब है, महंगे फल खाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं।
0: महंगे फल नहीं खाएं, सबसे फल खीरा खाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी देता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करता है आपकी, ऐसे फल लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है सेब ही खाएं आप, और जितने भी फल हैं तरबूजा है ये भी खा सकते हैं, इसमें बहुत पानी होता है, मतलब वाटरी फल ज़्यादा होने चाहिए।
1: अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि एक बार खाना बना के 2-3 बार इस्तेमाल कर लेती है, क्या ये प्रक्रिया सही है?
0: नहीं, इस मौसम में ऐसा ज़्यादा फ्रिज का रखा हुआ खाना, बहुत टाइम तक का रखा खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फर्मेंटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
1: आपने भी जिक्र किया कि प्रोटीन का कम से कम इस्तेमाल करें, आज की युवा पीढ़ी तो जिम जाती है तो वो स्टार्ट अपने दिन की शुरुआत ही प्रोटीन शेक से करती है।
0: प्रोटीन इस समय जो डाइजेशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और प्रोटीन डाइजेशन के लिए ज़्यादा वो चाहिए, तो इसलिए एक प्रोटीन जरूर लें लेकिन ज़्यादा मात्रा में न लें, कम प्रोटीन के खाने लें।
1: कुछ लोग ऐसा मानना होता है कि इस जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, गर्मी से बचने के लिए फटाफट लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं कुछ राहत मिल जाए, लेकिन क्या ये शरीर के लिए सही है या गलत?
0: ये कोल्ड ड्रिंक बहुत सी चीज़ों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा होती है, इसलिए वाटर को रिप्लेनिश करने के लिए कहीं अगर आपको कुछ नहीं है, आप ढूंढने जाएंगे जूस की दुकान नहीं मिलेगी आपको, और लेकिन 10 जगह कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा तो वो आप ले लें, आपको हर जगह ये नारियल का पानी नहीं मिलेगा, या आप हर जगह नींबू पानी बना नहीं पाएंगे, जहाँ ये मिले वहाँ उनका प्रेफरेंस होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक लास्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। लेकिन जब वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं और पानी की वो भी वो है शॉर्टेज कहीं, तो फिर उसका सहारा लेना जरूरी है, जिससे बॉडी का पानी कम नहीं हो।
1: किस उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक बहुत जल्दी प्रभावित करता है, क्या कुछ ऐसा खास है क्या?
0: ओल्ड एज बच्चे, इनको थोड़ा ज़्यादा बचाव करना चाहिए, इनका बॉडी रेजिस्टेंस पावर कम होता है, इसलिए।
1: गर्मियों से होने वाली और कौन कौन सी बीमारियाँ जो हमें कर सकती हैं?
0: इन दिनों तो सबसे ज़्यादा बीमारी यही है,

0: बाकी इस समय कुछ किस्म की बारिश भी हो जाती है, एलर्जी बीमारियां भी हो जाती हैं।
1: इस मौसम को देखते हुए अंत में श्रोताओं से क्या कहना चाहिए?
0: इस मौसम में अपनी कुछ सावधान रहना चाहिए, इस मौसम से लड़ने के लिए सावधानी अगर आप में है तो इस मौसम से आप बच सकते हैं। ऐसा है, अगर आप प्रिवेंटिव मेजर लेंगे तो आप बिल्कुल निकलेंगे घर से, बिल्कुल 24 घंटे तो आप नहीं बैठे रह सकते। हाँ। आप काम काज पे जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, सारे ऑफिस तो बंद हुए नहीं है, तो उसकी सावधानी से आप निकलें, छाता लेके चलें, कपड़ा सर पे ढकें, इन चीजों के साथ आप और थोड़ा ध्यान रखें, पानी हमेशा आपके पास हो, पानी पीते रहें, ये चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत कुछ बचाव कर सकते हैं इससे।

अब डालते नजर आज के इतिहास पर। 30 मई 1826 को पंडित युगल किशोर शुक्ला द्वारा कलकत्ता से हिंदी के पहले समाचार पत्र उर्दंत मातरंड का प्रकाशन शुरू किया गया। इसी उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड का त्याग 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। 30 मई 1888 को गोवा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह भारतीय संघ का 26वां राज्य बना। 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करी थी। वहीं 1896 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क के इतिहास का पहला ऑटोमोबाइल कार एक्सीडेंट दर्ज किया गया था। 2012 में भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथ आनंद ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। आकाशवाणी के 90 वर्षों के हम सफर में आकाशवाणी ने कई नए आयाम स्थापित किए हैं। वर्ष 2013 में प्रसार भारती ने न्यूज ऑन एयर ऐप लॉन्च किया। इससे आकाशवाणी दूरदर्शन के कार्यक्रम सीधे लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचे। न्यूज ऑन एयर ऐप लॉन्च होने के बाद हमारे जो कार्यक्रम है आकाशवाणी दूरदर्शन के, वो लोगों के मोबाइल तक पहुंचे, जिससे लोगों के घर घर तक पहुंच गए। इस ऐप के माध्यम से आकाशवाणी 230 से अधिक चैनलों से दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लाइव प्रोग्राम सुनाया जा सकता है। क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत बातचीत करते हैं विषयों के बारे में जो होते हैं आम बन जाते हैं खास, क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते। आज के समय में हम देख रहे हैं कि आंधी तूफान बारिश निरंतर आ ही रही है। ऐसे में हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारे घर में कूड़ा जमा होता है, उसको तो हम साफ कर देते हैं, लेकिन सड़कों पर जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए हम शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। अपने घर के कूड़े करकट को हम साफ करके बाहर सड़क पर डाल देते हैं, जो किसी न किसी रूप में हमारे घर में वापस आ जाता है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इस समय गर्मी अपनी चरम सीमा पर और बहुत सारे लोग हमारे जनपद में दर्शन करने आ रहे हैं, घूमने फिरने के उद्देश्य से भी आ रहे हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अगर आप अपने जनपद को, अपने शहर को साफ करने का प्रयास नहीं करेंगे तो निसंदेह आप बाहर वाले को क्या सीख देंगे। जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो किसी जगह की व्यवस्था को देखकर, साफ सफाई को देखकर हमारा मन खुश होता है और हम उसके बारे में धारणा बना लेते हैं कि ये जगह ऐसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं। वही सारी सिचुएशन हमारे साथ भी लागू होती हैं। जब भी हम दर्शन करने जाएं तो पॉलीथिन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अक्सर देखते हैं कि पॉलीथिन में पूजा का सामान वगैरह ले जाते हैं, पूजा करिए उसके बाद उस पॉलीथिन को बाहर ही छोड़ देते हैं। ऐसे में यह पॉलीथिन बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं अधिक मास भी चल रहा है, ऐसे में जगह जगह भंडारे चलवा रहे हैं लोग, प्याऊ भी लगवा रहे हैं, काफ़ी सारे धार्मिक आयोजन भी कर रहे हैं लोग, सेवा भाव से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होती है वो गौर करने लायक है। डस्टबिन रखिए अपने पास, जो भी आप कुछ खाएं पिएं उसको डस्टबिन में डालें, और जो रैपर्स वगैरह हैं, जो खाली दोने हैं पत्तलन को डस्टबिन में डालें, और लोगों को भी यही प्रेरणा दें कि आपने जो कुछ खाया पिया उसके बाद जो कुछ बचता है आप उसको डस्टबिन में डालिए। क्योंकि अगर कोई इस तरह की सेवा जो मनुष्य पवित्र भाव से करता है, कहीं ना कहीं दूसरे आदमी फिर उससे मन महसूस कर रह जाते हैं कि देखो आपने तो सेवा अच्छी करी, लेकिन बाद में जो गंदगी फैलती है उसका निस्तारण किस प्रकार हो। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स पर भी पूरा ध्यान दें। कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे बाद में जनता को परेशानी हो। आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएं। अगर आप अधिकार की मांग करते हैं तो कर्तव्य का भी पालन करें। अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। और इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

सुरमे शर्मा, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है नौटंकी मध्य निषेध। आलेख लक्ष्मण प्रसाद सिंह खलीफा का है, प्रस्तुति है टीएन शर्मा की।

अभी आपने सुनी नौटंकी मद निषेध। इसका आलेख लक्ष्मण प्रसाद सिंह खलीफा का था। प्रस्तुति रही TN शर्मा की। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है एक ही कलाकार। एक बार फिर इस कार्यक्रम को लेकर मैं आपकी दोस्त दीपिका हूँ आपके साथ। ये वही कार्यक्रम है जिसमें हम करते हैं किसी एक कलाकार के बारे में बहुत सारी बातें और मैं सुनवाती हूँ आपको उनसे जुड़े हुए किस्से और गीत। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने अपनी आवाज का जादू ऐसा बिखेरा जिसे सुनकर हम सभी किसी मखमली नींद के जैसे सपनों में खो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अनंत सुब्रमणि हरिहरन की, जिन्हें हम सभी ए हरिहरन या हरिहरन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हरिहरन जी को हमेशा विकिपीडिया से एक शिकायत रही और वो शिकायत ये थी कि जब भी उनके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ा जाता है तो उनके जन्म का जो स्थान है उसका वर्णन केरल के तिरुवनंतपुरम के बारे में किया जाता है, जबकि उनका कहना ऐसा है कि वो खालिस मुंबईयन है, यानी कि उनका जन्म मुंबई में ही हुआ है और उनकी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई में हुई है। तो ए हरिहरन जी का जन्म हुआ 3 अप्रैल 1955 में मुंबई में। मुंबई का वो स्थान था दादर। दादर में जन्मे ए हरिहरन बचपन से ही संगीत के माहौल में पले बड़े थे। आपके माता और पिता दोनों ही संगीत से संबंध रखते थे। आपकी माताजी अलमेलु मणि प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी और शिक्षिका भी थी। साथ ही आपके जो पिताजी थे वो भी शास्त्रीय संगीतकार थे। तो ऐसे माहौल में ए हरिहरन जी ने अपना प्रारंभिक जीवन जब आरंभ किया तो 5 वर्ष की अवस्था में उनकी माताजी उन्हें गोद में लेके अपना रियाज किया करती थी। तो ये बात यथोचित भी थी कि इतने छोटे बालक के मन में संगीत के प्रति एक लगन लग जाना सामान्य था। ऐसा हुआ भी और 8 वर्ष की उम्र तक आते आते हरिहरन जी ने अपनी माता जी को ही अपना गुरु मान के संगीत की शिक्षा आरंभ भी कर दी थी। लेकिन इस अवस्था में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें हिला के रख दिया। हुआ यूं कि मात्र 40 वर्ष की आयु में आपके पिताजी का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया, जिसके कारण एक बार घर की स्थिति डावाडोल हुई, लेकिन एक सशक्त माता के होते हुए बच्चों पर किसी प्रकार की आंच नहीं आई और माताजी ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों की शिक्षा दीक्षा और सभी चीजों को संभाला। बताऊंगी और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में, पहले सुन लेते हैं इनका गीत।

तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ए हरिहरन की। हरिहरन जी का संगीत के प्रति रुझान जबरदस्त था। वो विभिन्न प्रकार के कलाकारों की ऑडियो सुना करते थे और उससे इम्प्रेस हुआ करते थे और उनसे सीखने का प्रयास भी किया करते थे। इसी क्रम में उन्होंने एक बार किसी ऐसे कलाकार को सुना जिसे सुनते ही उनके मन में आया कि क्यों ना इनसे मिला जाए। वो थे बड़े गुलाम अली खान साहब। इनसे मिलने की बात आते ही इनकी माताजी ने कहा कि उनसे मिलना इतना सरल नहीं है, लेकिन ए हरिहरन धुन के पक्के थे। उन्होंने अपने प्रयास को जारी रखा और एक बार जब गुलाम अली खान साहब इनकी माताजी से, जो कि पूर्व परिचित थी, मिलने के लिए आए और उन्होंने हरिहरन जी के विषय में उन्हें बताया, तो उन्होंने इन्हें संगीत की शिक्षा देना स्वीकार कर लिया और यहीं से हरिहरन जी का संगीत के प्रति जो रुझान था वो अब एक मुख्य करियर ऑप्शन के रूप में बदल गया। हरिहरन जी ने किसी एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं की, उन्होंने हर तरह के म्यूजिक को सुना और जहां से उनको अच्छा लगता था वहां से उन चीजों को वो सीखते थे, रियाज करते थे और कोशिश करते थे कि वो वैसी ही चीजों को अपने गायन में भी शामिल कर पाए। ऐसा ही एक वाक्या हुआ मेहंदी हसन साहब के समय। एक बार उनका भारत आगमन हुआ और जब ए हरिहरन जी को ये पता चला तो उन्होंने उनसे मिलना सुनिश्चित किया, लेकिन उस समय मेहंदी हसन साहब से मिलना कोई सरल बात नहीं थी। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, तो ए हरिहरन साहब ने एक बड़ी सी मोटी सी फाइल ली अपने हाथ में और सीधे जा पहुंचे उनके होटल और जाके बोले कि मैं अमुक न्यूज चैनल से आया हूं और पत्रकार हूं, तो मुझे उनसे मिलना है और उनका इंटरव्यू लेना है। अब उस समय पत्रकारों की एक अलग ही रौब हुआ करता था। तुरंत ही रिसेप्शन से मेहंदी हसन साहब के रूम में फोन किया गया, उनके सुपुत्र वहां पर थे, उन्होंने कहा कि आप अंदर भेज दीजिए। ये अंदर चले गए, अंदर जाके इन्होंने इंतजार किया और जब मेहंदी हसन साहब आए तो साष्टांग दंडवत करके उनके पैरों में बोले कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, बस एक आपका प्रशंसक हूं और खुद भी गाता हूं और आपके गाए हुए गीतों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस समय मेहंदी हसन साहब ने इनकी बातों को सुना और इन्हें खूब सारा आशीर्वाद देके वहां से विदा किया। लेकिन कुछ समय बाद ही ए हरिहरन साहब को मौका मिला फिल्म गमन में गाने का और इनका गाया हुआ पहला ही गीत जबरदस्त हिट हुआ।

तो दोस्तों, हरिहरन साहब की फिल्मों में एंट्री हो चुकी थी, उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल भी रहे थे, लेकिन उस तरह की सफलता नहीं मिल रही थी जिस तरह की सफलता के वो अधिकारी थे। उसी समय एक ऐसा गीत उन्हें मिला जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी, और वो गीत था बॉम्बे फिल्म का तू ही रे।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज हम बात कर रहे हैं ए हरिहरन के विषय में। तो दोस्तों, ए हरिहरन जी सिर्फ पार्श्व गायक ही नहीं हैं, उन्होंने भजन और गजल भी गाई हैं। उनका मुख्य रुझान तो गजलों की ओर ही था। एक बार जब वो फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड कर रहे थे और किसी गजल को गुनगुना रहे थे, तो जयदेव जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी आवाज गजल के लिए पूरी तरह से मुफीद है, लेकिन क्योंकि तुम केरल की तरफ के हो, इसीलिए तुम्हारा जो भाषा का तलफ्फुज है वो पूरी तरह से उचित नहीं है, तो इसको सुधारने के लिए तुम उर्दू की शिक्षा प्राप्त करो। ए हरिहरन जी ने इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया और तुरंत ही अपनी उर्दू पर काम किया। इसका परिणाम ये हुआ कि जब उन्होंने गजल गायकी में कदम रखा तो उनको सुन के कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी साउथ इंडियन ब्राह्मण को सुन रहे हैं। दोस्तों, उनके विषय में और भी बताती चलूं तो आपने बहुत सारी भाषाओं में गीत गाए हैं, जिनमें हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, सिंहली, मैथिली, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी भी शामिल है और इनके द्वारा गाए हुए गीतों की संख्या 15,000 से अधिक है। एक और विशेष रिकॉर्ड जो हरिहरन जी के नाम है वो है हनुमान चालीसा। जी हाँ, वर्ष 1992 में हरिहरन जी ने हनुमान चालीसा, जिसे टी सीरीज के लिए गाया था, अब तक उसे यूट्यूब पर 3 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और ये दुनिया का पहला भक्ति गीत बन चुका है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। अब एक बार फिर से वापस आते हैं इनके फिल्मी करियर की ओर। बॉम्बे फिल्म के इस गीत के बाद में हरिहरन जी को एक से बेहतर एक गीतों का मिलना आरंभ हो गया और उसमें उनके गाए हुए गीतों में से एक विशेष गीत ये था।

दोस्तों, ए हरिहरन जी ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना नाम नहीं किया, बल्कि उन्होंने वर्ष 1996 में मुंबई में लेस्ली लुइस के साथ कोलोनियल कजिन्स नाम से एक बैंड की स्थापना भी की। इस बैंड का पहला एल्बम ही एक फ्यूजनल एल्बम था जो एमटीवी अनप्लग्ड पर प्रदर्शित हुआ, और ये पहला भारतीय बैंड था। इसने कई पुरस्कार जीते और उस समय प्रसिद्धि के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिलबोर्ड अवार्ड में शामिल भी हुआ। इसके अलावा भी ए हरिहरन जी को बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। वर्ष 2004 में आपको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, और आज भी आप सक्रिय रूप से फिल्म इंडस्ट्री में भी और फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी अपने संगीत से अपनी जीवंत प्रस्तुतियां देते हैं। आपके गाए हुए गीत हमेशा हमेशा हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और रहेंगे। रोजा फिल्म में इनका गाया हुआ गीत भारत हमको जान से प्यारा है। आज भी हमेशा जब भी कोई देशभक्ति की बात हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या कोई भी ऐसा अवसर हो, जरूर बजता है और सुनने में इतना कर्णप्रिय लगता है कि जितनी भी बार उसे सुना जाए, हम कभी भी उसे सुनते सुनते थकते नहीं हैं। हरिहरन जी की आवाज में एक ऐसा जादू है कि वो कानों में रस घोल देती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार थे ए हरिहरन। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म खामोशी का ये गाना, और इस गाने को गाया था अलका याग्निक और हरिहरन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म यादें से। इस गीत को स्वर दिया है ए हरिहरन ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म यकीन का ये गाना। और आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की स्वर में फिल्म ये दिल आशिका का गाना गीत।

जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरज़ू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी।

वाजिद और अमृता काक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म वांटेड का ये गीत। और आइए अब सुनते हैं फिल्म साजन का ये गाना, और इस गाने को गाया है SP बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने।

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

करेंगे अपने बच्चों को जिम्मेदार नागरिक हम कैसे बनाएं। कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य होते हैं, इसीलिए उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी हमारा कर्तव्य होता है। उन पर ही देश की समाज की जिम्मेदारी होगी, इसीलिए उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाएं, उन्हें दूसरों की मदद करने वाला सेवाभावी नागरिक बनाएं। और ये जो संदेश अब हमारे पास आया है वो आया है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। लिखने वाले हमारे श्रोता फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण हैं। और ये संदेश हमें लिख भेजा है रेलवे रोड गंजुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर, नजमा बेगम नाज और इनके सभी संगीत साथियों ने। अगली फरमाइश फुटानी चौक नरन स्टेट से लल्लन मिश्रा, नूतन अमन, आराध्या और लल्लू पंडित की। ये संदेश हमारे पास आई है काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेश, सुषमा परिधि और मायरा सुरेश का। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा ने। ये संदेश हमारे पास आया है मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति, डीके साहू का रसेड़ा से। अगली फरमाइश हमारे पास लिख भेजी है पंढरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक और इनके सभी संगीत साथियों ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू, तरुण और इनके सभी संगीत साथी। ये संदेश हमें लिख भेजा है धनौरी तेलीवाला से निशान, सलमानी, नौशाद, आलिया, अयान बाबू ने। ये संदेश हमारे पास आया है श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा और इनके सभी संगीत साथियों का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर किशोर कुमार का गाया हुआ फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की गाय फिल्म मुस्कान के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। श्रोताओं, आज गीत बात और SMS में हम आपसे बात

श्रोताओं, हम आपसे बातें कर रहे हैं कि बच्चों को जिम्मेदार नागरिक हम कैसे बनाएं। जिम्मेदारी श्रोताओं, अपने कार्यों और उनके परिणामों को जिम्मेदारी लेने की क्षमता, उन्हें बढ़ाना, इसमें जवाबदेही उनकी सुनिश्चित करना, विश्वसनीयता उनकी सुनिश्चित करना, बच्चे को जिम्मेदारी सिखाने से उन्हें आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है, साथ ही जिससे वे चुनौतियों का सामना करने, सोच समझकर निर्णय लेने और अपने समुदाय में सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार होते हैं। और ये जो फरमाइश अब हमारे पास आई है वो आई है कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से। लिखने वाले हमारे श्रोता ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। ये संदेश सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीम हसन और इनके सभी संगीत साथियों का। और ये फरमाइश डोंगरा गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी, राधिका, बेबी, अनिष्का, तन्मय और इनके सभी संगीत साथियों का। और अगली फरमाइश हमारे पास गोकुल चौक गंगाजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गंजेश कुमार, रिया रानी, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली, फलना झा। और ये संदेश हमारे पास आया है रामगंज खंडवा से विजय महोविया, कविता, विशाल, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू का। अगला संदेश लिखने वाले श्रोता नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल, सोपान, नारायण, आशीष और इनके सभी संगीत साथी। ये संदेश हमारे पास पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसितासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद और इनके सभी संगीत साथियों का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म कुदरत का ये गीत।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए यह संदेश हमारे पास आया है जूली और जगदीश जौहरी का, पूजा पायल और इनके सभी संगीत साथियों का गुजरात गांधीगांव से। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और इनके सभी संगीत साथी। ये संदेश हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश और इनके सभी संगीत साथियों का। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बागपत से संजय, नमन और अपार ढींगिया। ये फरमाइश हमारे पास आई है मराठवाड़ा से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, प्रणाली, सर्वदा, सानवी, कल्पना और इनके सभी परिवारीजन। ये फरमाइश आई है जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, विपिन देव और आर्य कुमार जायसवाल की। अगला संदेश हमारे पास आया है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, भाविका डुग्गू सिक्का का। ये संदेश हमारे पास लिख भेजा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। अगली फरमाइश पटेल नगर मौलोड से डॉक्टर

रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजौरिया ने ये संदेश हमारे पास महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल रक्षत और इनके सभी परिवारीजन। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम है क्या कहना, स्वर कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के हैं।

श्रोताओं, हम आपसे बातें कर रहे हैं कि बच्चों को हम अपने जिम्मेदार नागरिक कैसे बनाएं। तो सबसे पहले श्रोताओं, हम अपने बच्चों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर एवं अधिक सक्रिय और नैतिक समाज की नींव रख सकते हैं। साथ ही अपने माता पिता को देखकर भी बच्चे सीखते हैं। इसीलिए जब आप अपने कार्यों में जिम्मेदारी का प्रदर्शन करते हैं तो आपके बच्चे द्वारा उन व्यवहारों को अपनाने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए आप भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाएं और आपके बच्चे भी आपको देखकर वैसा ही करेंगे।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट और निखिल कांगड़ा की। ये संदेश लिखने वाले श्रोता छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवागन, कौशल्या देवागन, हेमलता डिम्पल और इनके सभी संगीत साथी। अगली फरमाइश कोयते वस्ती पुनावली से अजय सोनवने, करिश्मा अविका, साइशा और इनके सभी परिवारीजन। अगला संदेश लिख भेजा है तेलीपारा विलासपुर से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास ने। अगला संदेश हमारे पास आया है फातिमा कॉलोनी रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद का। ये संदेश हमें लिख भेजा है गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चेलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके सभी संगीत साथियों ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है हर्षतराम रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी काना, मनोहर भाई, प्रभुलाल बागरी, झालावाड़ राजस्थान से। ये फरमाइश हमारे पास राजनगर कांति निकेतन से किशोर कांति गुप्ता, राजेश गुप्ता, कुसुम गुप्ता, शारदा गुप्ता, रूपा और इनके सभी संगीत साथियों की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चना ताई, हीरामन शिंदे, प्रणय और प्रतिभा गोड़ाने का। अगला संदेश हमारे पास आया है आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा का। अगली फरमाइश हमारे पास आई है महाराष्ट्र से श्री राम गोछली, उषा वैष्णवी, पूना युवराज की। ये संदेश हमें लिख भेजा है मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सल्फा फिरदोस, मुनी और इनके सभी संगीत साथियों की। अगला संदेश गांव जखड़गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल और इनके सभी संगीत साथियों का। अगली फरमाइश अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान की। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म प्रेम रुक का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: मथुरा जनपद वासियों हेतु आवश्यक सार्वजनिक घोषणा। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि मौसम विभाग द्वारा अगले 24 से 48 घंटों के लिए मथुरा एवं आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि, तेज आंधी तूफान, भारी वर्षा तथा बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। साथ ही कृपया अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर दीवारों से दूर रहें। तेज हवा और खराब मौसम के दौरान वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं तथा खुले मैदानों में जाने से बचें। किसान भाई अपनी फसल एवं पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें। बुजुर्गों और बच्चों को धूल भरी हवा एवं तूफान के समय बाहर ना निकलने दें। बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल, चार्जर एवं विद्युत उपकरणों का प्रयोग सावधानी से करें। यात्रा के दौरान मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं और प्रशासन

0: द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मथुरा को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।
1: प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं श्याम कमल रसिक।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे श्याम कमल रसिक। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के

0: 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गए हैं। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय युवा पत्रिका का कार्यक्रम युवा वार्ती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा घर अंगना। इसमें वार्ता प्रसारित की जाएगी, गर्मियों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल या ध्यान देने योग्य बातें। वार्ताकार होंगी रमा सक्सेना।

संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे मार्गदर्शन क्रम में भेंट वार्ता, बच्चों के व्यवहार पर पारिवारिक एवं शिक्षण संस्थानों की भूमिका। जानकारी देंगी श्वेता कुलश्रेष्ठ और इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। इसमें भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी गर्मियों में कलीलियों से होने वाले रोग बचाव एवं प्रबंधन। वार्ताकार होंगे जितेंद्र सिंह गंगाधार और भेंटकर्ता होंगे विजय सिंह नौलखा।

संध्या 7:05 पर साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा। प्रसंग होगा कृष्ण बलराम मथुरा गमन। कथाकार होंगे कृष्ण बिहारी पाठक।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर अंगना।

घर अंगना सुनने वाले सभी बहनान को हमारी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहनाओं कैसी हो? अब तो बारिश कछु है गई है और गर्मी कम है गई है, तापमान कछु घट गया है। बहनाओं अब तो बच्चन की छुट्टी चल रही होते हैं, आपके बच्चन ने घर में कछु न कछु रोज नई चीज बना के उन्हें खवावी क्यों फरमाइश है रही हुई, क्योंकि हमारे बच्चा घर में हमें बहुत ही परेशान कर रहे हैं। रोज कछु न कछु नई फरमाइश, आज ये बनाओ आज वो बनाओ, तो हमारी बहनों कछु परेशान होंगी और वो सोच रही होंगी कि कहाँ बना के दें बच्चन ने। तो बहनाओं घर में कभी कभी ऐसा होए कि कछु चीज होए ना है, तो लेकिन घर में आलू जरूर होए हैं। आलू ते बहनाओं कई तरह की हम चीज बच्चे ने बना के दे सके हैं,

जो कि आलू सब जिनको राजा कहो जाए है। और हम गृहिणी ने तो घर में आलू ते कई तरह की चीज बनावे में महारत हासिल हुए है। हम आलू ते बच्चन को फिंगर चिप्स बनाए के दे सके हैं, तो आलू के पराठे या आलू की कचौड़ी ये सब चीज़ बच्चन ने हम बना के दे सके हैं। और ये सारी जो चीज़ हैं वो बच्चन के संग संग बड़े उन्हें काफ़ी पसंद हुए हैं। बहनाओं, एक अकेले आलू ते हम कई तरह के व्यंजन बना सके हैं। आलू ते हैं बहनाओं, हमें याद आया कि आज तो 30 मई हते और आज के दिन तो विश्व आलू दिवस मनाया जाए है। बहनाओं, आज 30 मई के ही दिना विश्व आलू दिवस मनाया जाए है। बहनाओं, संयुक्त राष्ट्र के में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा, पोषण और गरीबी उन्मूलन में आलू के महत्व को उजागर करने के लिए स्थापित किया गया है। बहनों, आलू को जो दिवस है, विश्व आलू दिवस जब मनावे को जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है अरबों लोगों को पेट भरवे वारे और लगभग 2 अरब लोगों के लिए मुख्य भोजन के रूप में काम करे वारी जब बहुमुखी सब्जी के प्रति जागरूकता फैलाना। बहनाओं, ये करोड़ों किसानों के लिए आय को एक प्रमुख स्रोत है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देवे में मदद करे है। और श्रोताओं, अब हम अपने जा कार्यक्रम को आगे बढ़ावे और आपको सुनवावे जे प्यारो सो लोकगीत अंशुना सक्सेना को गायब भयो। तो बहनाओं, आनंद लेव जा लोकगीत को।

जीवन के खूबसूरत पलों में से एक होता है। गर्भावस्था के दौरान माँ की हर छोटी बड़ी गतिविधियों का प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है। इसलिए शुरू से ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलने पर जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। अतः गर्भावस्था में अच्छी देखभाल जरूरी है। गर्मियों में गर्भवती महिलाओं को किन बातों का अधिक ध्यान रखना चाहिए, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। ग्रीष्म ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से अभिशाप है, क्योंकि इस ऋतु में ऐसे रोगों का प्रादुर्भाव होता है कि कई बार तो जीवन की रक्षा करना कठिन हो जाता है। उचित आहार विहार, उचित कर्म व्यवहार तथा समय पर सोना, प्रातः जल्दी उठना स्वास्थ्य का रक्षा सूत्र है, जिसका पालन करने से शरीर व मन स्वस्थ रहता है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारा खान पान व रहन सहन बहुत प्रभावित हुआ है। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ा है। आज के समय में हमारा लाइफ स्टाइल बदलने के साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम अर्थात शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी कमजोर हुआ है। इसी कारण से लोग तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। गर्भवती माताओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे स्वास्थ्य की नियमित जांच, आहार विहार, रोग प्रतिरक्षण आदि। परंतु गर्मी के मौसम में गर्भवती महिला को आहार विहार पर विशेष ही ध्यान देना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में कुछ रोग तो सीधे गर्मी की वजह से, कुछ मक्खी मच्छर से, कुछ मौसम में नमी की कमी के कारण तथा कुछ गर्मी में संक्रमण की वजह से होते हैं। गर्मी के कारण लू लगना, समर सिकनेस, ग्रीष्म थकान, शरीर में पानी की कमी आदि रोग प्रायः होते हैं। इसमें कुछ इस तरह के लक्षण होते हैं, जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, उल्टी दस्त, आँखों में जलन, उलझन, बेचैनी, कमजोरी, थकान, घबराहट, चक्कर, जी मिचलाना, पेट में मरोड़ होना, शरीर में कंपन होना, होंठ और जीभ का सूखना, हाथ पैरों की मांसपेशियों में संकुचन व दर्द होना, रक्तचाप का कम होना तथा इस ऋतु में संक्रमण के कारण जैसे फोड़े फुंसी कम होना, टाइफाइड होना, कॉलरा होना, बुखार आदि हो सकते हैं तथा मच्छर मक्खियों के कारण से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया आदि रोग हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए मौसम के अनुरूप आहार विहार रखना चाहिए। इससे बच्चे के विकास में कमी हो सकती है, कोई विकलांगता आ सकती है, अधिक गंभीरता होने पर गर्भपात हो सकता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है या फिर कई बार तो गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो सकती है। अतः माँ को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य माँ के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यूँ तो शरीर में स्वाभाविक रूप से ताप का नियमन होता है। मानव शरीर का तापक्रम लगभग 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वातावरण का तापक्रम और शरीर के तापक्रम से अधिक, यदि वातावरण का तापक्रम शरीर के तापक्रम से अधिक होता है तो पसीना आने लगता है और पसीने के सूखने में ऊर्जा खर्च होती है, जिससे शरीर का ताप सामान्य से अधिक नहीं बढ़ने पाता और इस तरह से शरीर के ताप का नियमन होता रहता है। शरीर में ताप नियंत्रण क्रिया के बिगड़ जाने पर मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। वातावरण का ताप जितना अधिक होगा, शरीर का तापमान सामान्य रखने के लिए उतने ही अधिक पसीने की आवश्यकता होती है। पसीने का उपयोग तभी है जबकि वो सूखता रहे। इसीलिए बरसात के मौसम में जब हवा में नमी अधिक रहती है तो पसीना सूख नहीं पाता और गर्मी बड़ी असहनीय लगती है। यदि गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी हो जाए और पसीना कम आए या पसीना सूखने ना पाए तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। शरीर में नमक यानी सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है और अधिक गर्मी के कारण शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं के टूटने से, पोटेशियम आयन के निकलने से रक्त में पोटेशियम आयन की अधिकता हो जाती है। इस अवस्था में थोड़ी सी लापरवाही से गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में जी मिचलाना व उल्टी की शिकायत स्वाभाविक रूप से अधिकतर होती है। ऐसे में यदि गर्मी का मौसम भी हो तो शरीर में पानी की कमी होने की ज्यादा संभावना होती है। अतः डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखते ही लापरवाही न बरतकर पेय पदार्थ बार बार तथा अधिक मात्रा में लेना चाहिए। जीवन

0: रक्षा घोल ORS जो कि सभी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र और दुकानों पर उपलब्ध रहता है, बार बार लेना चाहिए। यदि ये न मिल सके तो घर पर ही 1 लीटर पानी में 5 ग्राम नमक और 20 ग्राम चीनी मिलाकर घोल बनाकर सेवन करें, या फिर 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच चीनी डालकर घोल बना लें। इसके अतिरिक्त एंटीएमेटिक ड्रग्स उल्टी रोकने के लिए महिला को दें। इसके अलावा गर्मी के मौसम में दही की लस्सी, मट्ठा, नींबू की शिकंजी, गन्ने का रस, आम का पना, इमली का पना, ताजे फलों का रस, नारियल पानी, बेल का शरबत, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, आंवले का मुरब्बा, पुदीने की चटनी, कच्चा प्याज, ठंडा दूध, इन चीज़ों का सेवन करें क्योंकि ये गर्मी को शांत करते हैं। चाय और कॉफ़ी का सेवन न करें, यदि ले भी तो कम मात्रा में लें। खुली खाने की चीज़ें व रखे कटे फल का सेवन न करें। नाश्ते में अंकुरित चने, मूंग, मोठ आदि लें तथा खाने में भोजन हल्का करें। भोजन अधिक मात्रा में न लें, अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग न करें, मद्यपान न करें। इसके अलावा लू के लक्षण दिखने पर महिला को पेय पदार्थ तो दें ही, साथ ही उसको खुले हवादार ठंडे कमरे में लिटाएं। अगर बुखार तेज है तो उसे तौलिया ठंडे पानी में भिगोकर शरीर पर रखें और पंखा चला दें, और ऐसा तब तक करें कि जब तक कि शरीर का तापमान कम न हो जाए। गर्भवती महिला के बच्चे की ग्रोथ के कारण गर्भाशय के बढ़ने से पेट भरता है, और पेट की त्वचा पर खिंचाव व तनाव के कारण स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, जिसमें कभी कभी खुजली पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में पसीने की वजह से महिला को ज़्यादा ही परेशानी होती है। ऐसे में मेडिकेटेड पाउडर या लैक्टोकैलामिन लोशन, गरी का तेल आदि लगाएं तथा पसीने को हवा से सूखने लें। इसके अलावा गर्मी के मौसम में महिला को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हल्के रंग के सूती तथा ढीले कपड़े पहने, गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि गहरे रंग सूर्य की किरणों को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे अधिक गर्मी लगती है। रोज सुबह शाम स्नान करें, दोपहर में 1-2 घंटे सोना और आराम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रातः और शाम ठंडी जगह पर खुली हवा में घूमें, हल्का व्यायाम करें, धूप में गहरे रंग के चश्मे का प्रयोग करें। इसके अलावा महिला को अधिक समय तक गर्म वातावरण में नहीं रहना चाहिए। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी या मच्छरनाशक साधनों का प्रयोग करें। इन बातों का ध्यान रखने से गर्भवती महिला गर्मी में होने वाले रोगों से अपना बचाव कर खुद को तो स्वस्थ रखेगी ही, साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु को भी।
1: बहनाओं, अभी आपने सुनी ये जानकारी, गर्मियों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल या ध्यान देने योग्य बातें। जानकारी दे रही थी रमा सक्सेना। बहनाओं, कल 31 मई को विश्व तम्बाकू दिवस निषेध दिवस मनाया जाए है, और जाए मनावे को मुख्य उद्देश्य लोगों को तम्बाकू के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरा जैसे कि कैंसर, दिल की बीमारी, फेफड़े के जो नुकसान हुए हैं, वाके प्रति जागरूक करवे के लिए ये तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाए है। बहनाओं, पहली बार ये दिवस 7 अप्रैल 1988 को मनाया गया है तो, लेकिन बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारित संकल्प के अनुसार जाए हर साल 31 मई को मनाया जाए है। बहनाओं, तम्बाकू और निकोटीन के सेवन को कम करवे के लिए और जाके प्रभावन को कम करवे के लिए ही जाए मनाया जाए है, और जो युवा हैं जाकि लत से बचें, धूम्रपान कम करें, धूम्रपान की लत से वे बचें, यही लिए जाए जागरूकता फैलावे के लिए विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है मनाया जाए है। और बहनाओं, अब आनंद ले में सावित्री दीक्षित के गाए भए जा लोकगीत को।

बहनाओ, अभी आपने सुनो सावित्री दीक्षित को गाया हुआ है जिलू गीत। और बहनाओ, जो मौसमी फल हुए हैं बिने खावे थे, जो है हमें का फ़ायदा हुए, जाके बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि मौसम के अनुसार फल खावे थे शरीर को प्राकृतिक पोषण, बेहतर पाचन और मौसम की जो बीमारी हुए हैं उनमें लड़वे की शक्ति मिले है। स्थानीय और मौसमी फल वो उस विशेष मौसम की शारीरिक जरूरत ने जो है पूरा करवे के लिए सबसे उपयुक्त माने जाए हैं। विटामिन और मिनरल्स, मौसमी जो फल हुए हैं उनमें विटामिन्स और मिनरल्स हुए हैं जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावे हैं। इन फलन में भरपूर प्राकृतिक फाइबर पाए जाए हैं जो कि पेट को स्वस्थ रखे हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत प्रदान करे हैं। बहनाओ, गर्मी में आवे वाले फल जैसे कि तरबूज हैं, खरबूज हैं, फालसे हैं, जामुन हैं, ये शरीर में पानी की जो कमी है वाय तो पूरा करे ही हैं, पेट वो सही है रखे हैं और हमारे जो पेट को जो स्वास्थ्य है वो सही बना रहे हैं। जाके लिए बहनाओ ज़रूरी है कि जो मौसम में फल आए हैं उन्हें ही खाया जाए। मौसमी फलन को सेवन करना जाके लिए बहुत ही आवश्यक हुए है क्योंकि वो फल वही मौसम के अनुरूप ही बने हैं। इसलिए मौसमी फल खावे की जो है हम लोगों ने जो है बात बताए करे हैं और मौसम के अनुसार ही फल खाने चाहिए। और बहनाओ, अब आनंद लेओ जा लोकगीत का।

और बहनाओं, जय लोकगीत के संगी हमारा आज का घर अंगना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुए है। हमारी सभी बहनन को हमारी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर अंगना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सामुदायिक शिक्षा गान पाठ के अंतर्गत गुजराती भाषा पाठ। गीतकार हैं जगत चंद्र मेधानी।
1: नमस्ते चंदू भाई।
2: नमस्ते हिरल बेन। नमस्ते शिवानी बेन। मैं आपको संघ गान के रूप में आज एक काव्य सिखा रहा हूँ। काव्य की रचना झवेरचंद मेघाणी ने की है। झवेरचंद मेघाणी राष्ट्रीय शायर थे। सौराष्ट्र का लोक संगीत उसने अच्छी तरह से समृद्ध बनाया है। ये वही रचना है जो लोक संगीत में बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं पहले आपको ये रचना लिखवा दूं, आप लिखिए।
1: ठीक है।
2: काव्य का कवि है झवेरचंद मेघाणी। राग भैरवी और ताल खेमटा। लिख लिया?
1: हाँ, लिख लिया।
2: अभी ये जो रचना है वो गुजराती में है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग।
1: हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग।
2: हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। ये स्थाई है। हाँ ठीक है, लिख लिया? हाँ ठीक है। और अभी पहला अंतरा। जननी ना हैया मा पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसुंबीनो रंग।
1: जननी ना हैया मा

0: ठीक है, ओढ़नता ओढ़नता
1: पीलो कसुम बिनो रंग,
0: ठीक है। आगे धोला धावण केरी धाराए धाराए, धोला धावण केरी धाराए
1: धाराए
0: पाम्यो कसुम बिनो रंग, पाम्यो कसुम बिनो रंग। वहाँ एक लिख दीजिए और हो राज मने लाग्यो कसुम बिनो रंग, ऐसे है वो जो अस्थाई की लाइन है वो फिर से गाना है, तो हो राज इतना ही लिख लो। ये पहला अंतरा हुआ। अब दूसरा अंतरा, बहनी ने कंठे नीतरता हालर डामा घोड़ो कसुम बिनो रंग, बहनी ने कंठे ठीक है घोड़ियों कसुम बिनो रंग। दूसरी लाइन, भीषण रात्रि केरा पहाड़ोनी त्राड़ोए चोड़ियों कसुम बिनो रंग, भीषण रात्रि
1: केरा पहाड़ोनी त्राड़ोए
0: ठीक है
1: चोड़ियों कसुम बिनो रंग।
0: वहां हो राज इतना लिख दो, दूसरा अंतरा यहाँ खत्म हुआ। अभी तीसरा अंतरा, दुनिया ना वीरों ना लीला बलिदानों मा भभक्यो कसुम बिनो रंग, दुनिया ना वीरों ना लीला
1: बलिदानों मा भभक्यो कसुम बिनो रंग,
0: ठीक है। आगे, सागर ने पारे स्वाधीनतानी कबरोमा महक्यो कसुम बिनो रंग, सागर ने पारे स्वाधीनतानी
1: कबरोमा महक्यो कसुम बिनो रंग।
0: और वहाँ हो राज इतना लिख दो, वहाँ पहली लाइन वो फिर से गानी है। यहाँ तीन अंतरा खत्म हुआ। चौथा, भक्तों ना तंबू रथी तपकेलो मस्ती भर चाख्यो कसुम बिनो रंग, भक्तों ना तंबू रथी तपकेलो
1: मस्ती भर चाख्यो कसुम बिनो रंग।
0: वाह। दूसरी लाइन, वहाली दिलदाराना पगनी मेहंदी पर थी चूम्यो कसुम बिनो रंग, वहाली दिलदाराना
1: पगनी मेहंदी पर चूम्यो कसुम बिनो रंग।
0: वहाँ हो राज इतना लिख दो। अब नेक्स्ट, नवली दुनिया केरा स्वप्नों मा कवियोए गायो कसुम बिनो रंग, नवली दुनिया केरा
1: स्वप्नों मा कवियोए गायो कसुम बिनो रंग।
0: आगे, मुक्ति ने क्यारे निज रक्तो रेडन हारे पायो कसुम बिनो रंग, मुक्ति ने
1: क्यारे निज रक्तो रेडन हारे पायो कसुम बिनो रंग।
0: वहाँ हो राज इतना लिख दो। आगे, पीड़ितनी आसुड़ा धारे हाहाकारे रेलियो कसुम बिनो रंग,
1: पीड़ितनी आसुड़ा धारे हाहाकारे
0: रेलियो
1: कसुम बिनो रंग,
0: शहीदों ना धग धगता निश्वासे निश्वासे सड़गियो कसुम बिनो रंग, शहीदों ना धग धगता निश्वासे निश्वासे
1: सड़गियो कसुम बिनो रंग।
0: हो राज इतना लिख दो। यहाँ ये जो काव्य है वो खत्म हुआ। मैंने पहले बताया ना कि ये जो काव्य है वो राग भैरवी पर आधारित है। भैरवी राग का स्वर मैं आपको

अभी बताता हूँ। ये राग में वैसे तो 12 स्वरों का प्रयोग होता है। यहाँ जितने कोमल स्वर आते हैं वो रे ग ध नी, ये चारों स्वर कोमल है। संगीत में चारों स्वर ही कोमल है और शुद्ध भी है। ये भैरवी राग में चारों स्वर कोमल का प्रयोग है और ऋषभ शुद्ध का भी प्रयोग है, इसलिए ऋषभ कोमल और ऋषभ शुद्ध ऐसे प्रयोग हैं। ये प्रयोग ये काव्य में

ये जो क्रिया मैंने की उनको आरोह कहते हैं। अच्छा ऐसा करें, आपको थोड़ा सा तो समझ में आ गया है, तो आप मेरे साथ ही गाएंगे? हाँ। गाइए मेरे साथ।

अंग है स रे ग म प द प ग म द स, मगर हम उसमें ज्यादा नहीं करेंगे। ये काव्य है वो भैरवी राग में, मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले मैं गाऊं, आप कोशिश करें गाने की,

वहाँ जो ऋषभ है वो शुद्ध का प्रयोग है, सा ग रे ग, ये शुद्ध ऋषभ, स रे स, ये कोमल ऋषभ। पहले शुरू में शुद्ध का प्रयोग है, शुद्ध और कोमल दोनों का प्रयोग साथ में ही है ये काव्य में।

0: से हैं, यानी ऊपर के सा से हैं। ऊपर का सा कौन सा? सारे गामा पदनी सा, ये जो ऊपर का सा है वहां से अंतरा का उठाव है।
1: जननी ना है या मा पोडन

0: ऐसे हैं, सुनिए।
1: जननी नाहैया मा पोडंता पोडंता,
0: बस इतना ही आप करें।

0: हुआ आगे की एवा धो
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक शिक्षा गान पाठ के अंतर्गत गुजराती भाषा पाठ। गीतकार थे जगत चंद्र मिधानी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: Rajasthan, Vidarbha and Chhattisgarh. The Met Department said that northeastern states and coastal Karnataka are likely to experience thunderstorm accompanied with lightning. Heatwave conditions are likely to prevail over West Madhya Pradesh and Telangana. On to sports. In badminton, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto are taking on Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami in the semi-finals of the Singapore Open Super 750 tournament today. The Indian pair secured their semi-final berth after defeating Malaysia's Chen Thangri and Toh Yi in the quarter-finals yesterday. Meanwhile, India's men's doubles duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in semi-final action. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0, the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. US Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान

0: की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री विलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़न एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी

0: प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार

0: इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मारतंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मारतंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्र ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मारतंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमे नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना मुकेश के स्वर में फिल्म फरेब का ये गाना। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है श्री 420। शब्द रचना शैलेंद्र की है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। इस गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म काला बाजार का ये गीत। स्वर मोहम्मद रफ़ी का है, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत SD वर्मन का है।

महेंद्र कपूर और भूपेंद्र के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म दहलीज का ये गीत। गीत लिखा था हसन कमाल ने, संगीत दिया था रवि ने।

लता मंगेशकर के गाये फिल्म कालीचरण के इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा का सफर अब शुरू होता है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: कार्यक्रम युववाणी सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत बात करते हैं सबसे पहले राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के विषय में। जी हाँ दोस्तों, राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती से आशय राज्य तथा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और प्रशासनिक सेवाओं में योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया से है। इसका उद्देश्य लोक प्रशासन और इसके लिए कुशल, निष्पक्ष तथा योग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती मुख्य रूप से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC स्टाफ सिलेक्शन यानी SSC तथा अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत IAS, IPS, IFS और IRS, रेलवे तथा रक्षा विभिन्न मंत्रालयों की सेवा आती हैं। राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती संबंधित राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा इनकी भर्ती की जाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके साथ साथ अन्य भी। इनके माध्यम से SDM, DSP, तहसीलदार, वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा अन्य राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। भर्ती के प्रमुख सिद्धांत योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर चयन, समान अवसर का सिद्धांत, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया, आरक्षण नीति का पालन, प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना है। भर्ती की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों की अधिसूचना, आवेदन आमंत्रित करना, प्रारंभिक परीक्षा जहां पर लागू हो, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और अंतिम चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती सुशासन की आधारशिला है। इसके माध्यम से योग्य एवं प्रतिभाशाली और व्यक्ति ऐसे चुने जाते हैं जो कि योग्य हैं, साथ ही साथ प्रशासन को प्रभावी, उत्तरदायी और जनमोन्मुख बनाता है। तो दोस्तों, ये तो रही आज की बात की और अब आइए आपको सुनवाते हैं मार्गदर्शन के अंतर्गत भेंट वार्ता। विषय है बच्चों के व्यवहार एवं पारिवारिक एवं शिक्षण संस्थानों की भूमिका। इस भेंट वार्ता में श्वेता कुलश्रेष्ठ से भेंट की है OP सिंह ने।
1: साथियों, जीवन में आगे बढ़ना, अपने आप को संवारना, अपने आप को उस मुकाम पर ले जाना जहां हम चाहते हैं, निश्चित तौर पर इसमें शिक्षा हमारी बहुत मदद करती है। शिक्षा के साथ साथ हमारा परिवेश, हमारा समाज, हमारा परिवार और सबसे बढ़कर के हमारी जो शिक्षक है, जो विद्यालय है, उसका जो माहौल है, वो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या ऐसी चीज़ें जो जीवन में हमें आगे ले जाएंगी उनको अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत बड़ी मदद करता है। लेकिन देखा ये जा रहा है आजकल के परिवार छोटे हो गए हैं। हर परिवार में परिवार को आगे ले जाने के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए माँ और पिता दोनों ही कहीं ना कहीं घर से बाहर जाते हैं, तो छोटे परिवार और छोटे परिवार में भी अब न्यूक्लियस फैमिली और न्यूक्लियस फैमिली में भी अब ऐसा कि बच्चे शायद साधनों के साथ और आयाओं के साथ अपना

0: जीवन आगे ले जा रहे हैं। वो संसार को या समाज को समझने की कोशिश उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जिसको हमने अपने सहयोग के लिए लिया है, लेकिन जब उनका व्यवहार बदलता है, जब उनकी आदतें बदलती हैं, जब उनके स्वभाव बदलते हैं, तो कहीं चिंता का विषय शिक्षक और विद्यालय के लिए भी होता है और माँ बाप भी फिर परेशान होते हैं। लेकिन असली चीज़ कहीं पीछे छूट जा रही है कि परवरिश में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, नैतिक मूल्यों की, बड़े बुजुर्गों की, माँ बाप की, वो शायद बच्चों को नहीं मिल पा रहा और फिर वो व्यवहार में दिख रहा है। तो एक बच्चे का व्यवहार कैसे अच्छा हो, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो जीवन की सही समझ पैदा कर पाए, इसमें फिर वही कि परिवार और शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज हमारे साथ श्वेता कुलश्रेष्ठ जी हैं, आप करियर काउंसलर का काम देखती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विद्यालयों से भी जुड़ी हुई हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम देखती हैं। श्वेता जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार
1: नमस्कार सर।
0: जी। तो जो बच्चों का व्यवहार है आज हम जब देखते हैं, वो एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, किसी भी प्रोफेशन में वो आगे जाए, अच्छे लॉयर बने, लेकिन अच्छा इंसान बनना भी बहुत बड़ी आवश्यकता है।
1: जी सर, सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनना ज़रूरी है। करियर के तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन
0: जी
1: अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बनेगा तो वो सब कुछ कर सकता
0: जी
1: है।
0: तो मैं जो अपनी भूमिका में अपने श्रोताओं को जोड़ रहा था, क्या कहना चाहेंगे, चीज़ें कहाँ छूट रही हैं, कहाँ वो गैप हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे, देख पा रहे हैं तो उनको भर नहीं पा रहे, और भर भी पा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों से भर पा रहे हैं कि चीज़ें जुड़ नहीं पा रही, परिणाम नहीं निकल पा रहे, कुल मिलाकर बच्चों के को जो चाहिए वो शायद हम दे नहीं पा रहे।
1: जी सर, बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है न्यूक्लियर फैमिली का होना, घर में बुजुर्गों का ना होना, प्लस माँ बाप दोनों का वर्किंग होना, और हमारी पूरी डिपेंडेंसी मोबाइल फोन और घर की मेड्स और आया के ऊपर हो गई है। तो जो उनका कल्चर है बच्चे वही सीखते हैं, और बाद में हम ब्लेम करते हैं कि बच्चा अच्छे कल्चर नहीं सीख रहा है। जब हम उसको पेरेंटिंग ही अच्छी नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चा अच्छे कल्चर कैसे सीखेगा। और जहाँ तक बात है मोबाइल की, तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो आपको कभी आंसर नहीं करता है, वो केवल अपनी साइड से बोलता रहता है, और बच्चे को जो नहीं देखना चाहिए उसमें वो भी देखते हैं, और उसके साथ साथ बच्चे फिर एग्रेसिव होना स्टार्ट कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि ये बच्चा सीख कहाँ से रहा है। तो सीखने के लिए गैजेट तो हम खुद ही दे रहे हैं, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती बहुत हद तक पेरेंट्स की होती है।
0: अब एक ये भी कहा जाता है कि जैसे कोरोना आया 2000 में, फिर पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, एक समय ऐसा आया कि गैजेट शायद पढ़ाई के लिए आवश्यक हो गए और अब वो आदत बन गए। तो कोई चीज़ आदत बन गई तो आदत हमने उसको बनाया, ज़रूरत कोई चीज़ बन गई, ज़रूरत हमने उसको बनाया, तो क्या फिर से हमें लौट, क्योंकि 4-5 साल में ही हम इतना कैसे बदल सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हमारी वर्षों की और सदियों की और दशकों की चीज़ें, हमारे अच्छे संस्कार, अच्छी वो होती थी, वो इतनी पीछे छूट जाएं कि बच्चे अब गैजेट के आदी हो गए। तो क्या ऐसा लगता है कि ये माँ बाप खुद भाग दौड़ की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, उसमें बच्चों का जो एक पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस जो होता था माँ बाप के साथ रहना, परिवार के साथ रहना, वो कहीं घटता जा रहा है और बहुत घटता जा रहा है।
1: बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है। पहले जब जॉइंट फैमिली होती थी तो दादी दादा चाचा ताऊ सब एक साथ होते थे, तो हमें ये भी चिंता नहीं होती थी कि बच्चे ने कुछ खाया है कि नहीं खाया, क्योंकि जो भी खाना खा रहा होता था बच्चा उसके साथ खा लेता था। बच्चा गिर गया तो किसी ने भी देख लिया, उस टाइम पे माँ बाप की पर्सनल अटेंशन की जरूरत ही नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में माँ बाप सुबह से या शाम को दो ही टाइम बच्चों को घर में दिखते हैं, और उस टाइम में माँ बाप को ये लगता है कि उस 2 घंटे में बच्चे को 24 घंटे का पूरा प्यार दे दें, तो वो बच्चे को वो वाले फेस पे जाने ही नहीं देते कि बच्चा थोड़ा सा भी गिरे या कुछ भी अलग तरह से करे, क्योंकि वो मदर्स के लिए जो वर्किंग मदर्स है बहुत हेक्टिक हो जाते हैं कि बच्चे ने कुछ फैला दिया, गिरा दिया या कुछ, तो वो सब अपना पूरा दिन भर का फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो वर्किंग है, घर का काम भी देख रही है, बच्चा भी देख रही है, और कहीं ना कहीं मदर्स को ये गिल्ट भी होता है कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे
0: टाइम
1: हैं,
0: नहीं दे
1: जो
0: पा।
1: ज्वाइंट फैमिली में नहीं होता था, हर कोई बच्चे को देखता था। लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ें मिसिंग हैं जो शायद एक मेड कभी नहीं दे सकती, जो दादी नानी का प्यार होता था वो मिसिंग है।
0: हमने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा कि बच्चा घूमता रहता था, दौड़ता रहता था, भागता रहता था, और एक बुजुर्ग जो उसके आसपास होता था उसी भाग दौड़ में उसको पूरा खाना खिला देता था।
1: बिल्कुल सर।

0: छोटा टुकड़ा लेके कभी इस कोने पे, कभी इस कोने पे, कभी यहाँ बैठा बच्चा, और जो चीज़ घर में नहीं होती थी तो आस पड़ोस में जाके पूरी हो जाती थी।
1: बिल्कुल सर,
0: तो वो न तो पड़ोस रहा, न परिवार रहा, न संगी साथी रहे। अब आपने खुद ही कहा जैसे कि भाई माँ बाप भी, अब उसको कहीं गिल्ट होती है तो उसको फिर खीज के रूप में निकलता है। अब ऐसे में जो विद्यालय हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप तो पब्लिक एड का काम देख रही हैं, विद्यालयों में देख रही हैं, तो अब ले दे के आस फिर सबकी उधर हो जाती है कि अच्छा विद्यालय देख ले, अच्छे टीचर देख ले। तो किस तरह की समस्या आती है जब पेरेंटिंग के लिए जो होती है आपकी पीटीएम या अभिभावक आते हैं, तो शिक्षक से या विद्यालय से क्या चाहते हैं वो?
1: सर वो सारे जो जनरल माता पिता हैं वो विद्यालय से ये सोचते हैं कि जो प्यार उनकी ज़िंदगी में मिसिंग है या जो डिसिप्लिन उनकी ज़िंदगी में मिसिंग है वो सारा उन्हें शिक्षक या स्कूल दे दे, और स्कूल सारे 5 स्टार फैसिलिटी के साथ चाहिए होते हैं। वहाँ पर भी अगर टीचर तेज़ आवाज़ में बच्चे से बोल दे तो माँ बाप को और बच्चे को दोनों को ही बर्दाश्त नहीं
0: अच्छा
1: होता
0: नहीं
1: है,
0: लगता।
1: तो वहाँ फिर डिसिप्लिन की बात आप कैसे कर सकते हैं? जब आप खुद ही डिसिप्लिन में नहीं होना चाहते हैं तो बच्चे से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि बच्चा डिसिप्लिन में हो? उसके लिए वैसा माहौल बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। घर से शुरू करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बच्चे को समझ में तो आना चाहिए कि उसको जो बताया जा रहा है वो है क्या। अभी बच्चों को लगता है कि अगर टीचर ने थोड़ा सा भी अगर आपका आंसर भी रेड मार्क कर दिया है तो उनको लगता है कि कितनी बड़ी मिस्टेक
0: क्यों
1: हो गई और ये क्यों कर दिया मेरी
0: क्यों कर
1: कॉपी में। अगर
0: दिया?
1: आपने
0: नहीं,
1: सर्वे किया,
0: मैंने पीटीएम में खुद कई माँ बाप को ये देखते झगड़ते हुए देखा है कि आपने इतना 2 नंबर क्यों कम कर लिए, 1 नंबर क्यों कम दिया, यहाँ तो इतना हो सकता था। तो क्या नंबर ही जीवन हो गया है, नंबर ही आगे बढ़ने की या सफलता की निशानी हो गया है? मुझे तो नहीं लगता नंबरों से कभी जीवन चलता हो। बोर्ड में चाहे 90+ आ जाए या 80+ आ जाए, लेकिन आगे हम अच्छे इंसान, जो आपने कही कि अच्छे इंसान, अगर हम नंबर गेम क्यों इतना
1: सर
0: प्राथमिकता में?
1: शिक्षा को अंकों से जोड़ना तो कभी भी तार्किक था ही नहीं, क्योंकि जब आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, एक तो बच्चों के आजकल रीडिंग स्किल्स हैं ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल फोन पे आप 1 मिनट के रील पर भी बच्चा या हम बड़े भी नहीं टिक पाते हैं, तो हमारा फोकस कंसंट्रेशन तो पहले से ही खत्म है। दूसरा, जब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे तो नॉलेज मिल रही है ना, अगर मार्क्स 2 कम भी आ गए तो आपने सीखा तो पूरा ना, लेकिन इस चीज़ को कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको एक अंधी रेस का पार्ट बनना है कि दौड़ते जाना है। चाचा के बच्चे ने इतना जीता तो तुमने क्यों नहीं जीता, उसको गोल्ड मेडल मिला तो
0: हर
1: तुम्हें क्यों
0: हर
1: नहीं मिला,
0: आदमी नंबर
1: कंपैरिजन।
0: एक पे दिखना चाहता
1: बस
0: है।
1: बस हर कोई नंबर, और ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई नंबर 1 हो जाए, क्योंकि अगर नंबर 1 पर ही सब होते जाएंगे तो फिर फेलियर बच्चे कैसे फेस
0: जी, और
1: करेंगे?
0: नहीं, नंबर 1 पे अगर आज आप हैं तो कभी दूसरा भी तो नंबर 1
1: बिल्कुल
0: पे
1: आएगा
0: आएगा,
1: सर,
0: तो फिर
1: बिल्कुल, हर
0: गिरना
1: किसी को
0: आपके
1: नंबर
0: शायद
1: वन
0: अच्छा नहीं
1: चाहिए, हर किसी
0: है।
1: को नंबर 1 चाहिए और वो पॉसिबल नहीं है।
0: तो कहीं ये जीवन में सामूहिकता बड़ों में भी खत्म हो रही है? बच्चों में तो, बच्चे तो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहीं बड़ों में भी ये चीज, सहयोग की भावना, आपस के प्यार की भावना, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने, परिवारों में भी ये हो रहा है शायद,
1: सर
0: बच्चे भी तो यही
1: बिल्कुल
0: देख।
1: हो रहा है, यहाँ तक कि बच्चों के बात तो सेकेंडरी आती है, माँ
0: हाँ
1: बाप को ही चाहिए होता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे हो या मैं सबसे आगे हूँ, उसके लिए वो बिल्कुल झुकना पसंद नहीं करते हैं। जो खुद कर रहे हैं वही बच्चों को पास ऑन करते हैं। जब माँ बाप ही ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं तो बच्चा तो वही सीखेगा। माँ बाप खुद भी नहीं चाहते कि कहीं पर भी वो या उनका बच्चा सेकेंड नंबर पे आए, उन सबको चाहिए कि दे ऑलवेज रिमेन ऑन टॉप, तो
0: जी
1: वो पॉसिबल नहीं होता। और हर किसी की ये थिंकिंग होगी तो हर कोई टॉप पर नहीं आ सकता।
0: जी। और जब इसको थोड़ा सा हम आगे, एक तो ये बच्चों की बात हो गई, स्कूल की बात हो गई, यहाँ भी बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन जब और आगे बढ़ते हैं और जीवन के संघर्ष में उतरते हैं, तो उससे पहले के जो बहुत सारे बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे अभी कुछ एग्जामों की हम बात करें, कि वहाँ बहुत, तो कई बार ग्लिंचेज आ जाते हैं, उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तो और कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा करके भी शायद वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो ये जो ग्लिंचेज हैं, जो उतार चढ़ाव है, या जीवन का जो झटका जो अचानक से लगता है, तो फिर वहाँ वो कौन सी चीज़ें मदद करती हैं कि एक बच्चा फिर संभल जाए, परिवार उसके साथ खड़ा हो, समाज उसके साथ खड़ा हो, उसको ये विश्वास हो कि ठीक है, आज ये परेशानी हो सकती है, आज ये ग्लिंच हो सकता है, आज ये उतार चढ़ाव हो सकता है, रुकावट हो सकती है, लेकिन मेरे में अगर कैपेबिलिटी है, मेरे में अगर क्षमता है, मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, आज नहीं तो कल अगले अवसर में मैं जो है फिर से सफल हो जाऊंगा, मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें फिर कहाँ से आएंगी, आपको क्या लगता है? आप तो मोटिवेट

0: कृष्णा लाइफ,
1: सर
0: कैसे
1: सबसे
0: बच्चों को
1: जी
0: बताती
1: सर
0: है।
1: सबसे पहले तो असफलता अंत नहीं होती,
0: हाँ मतलब वो पहली सीढ़ी
1: जहां
0: है।
1: बिल्कुल पहली सीढ़ी है, जहां एक चीज खत्म होती है जैसे रात आएगी तो सुबह निश्चित ही आएगी ही आएगी। दूसरा, इसमें अभिभावकों का बहुत ज्यादा योगदान होता है कि अभिभावकों को अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपनी नहीं चाहिए। कभी उनको ये भी समझाना चाहिए कि अगर गिर जाते हैं तो उठते कैसे
0: उठ
1: हैं,
0: सकते हैं। जी जी
1: और
0: जी
1: वही फेस हम स्टार्टिंग से मिसिंग पे रखते हैं तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि उस सिचुएशन से कैसे कोप अप करें, जिसका कारण होता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे यहां तक कि इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि बच्चे सुसाइड करने तक का सोच लेते हैं।
0: हाँ
1: तो बच्चे को हमेशा ये याद दिलाते रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले तो तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट
0: जी
1: हो।
0: जी जी
1: पढ़ाई, अगर इंजीनियर नहीं भी बने तो कुछ ना कुछ तो बन ही
0: आप
1: जाओगे।
0: हमारा हिस्सा हो, हमारे
1: बिल्कुल
0: साथ रहोगे,
1: बिल्कुल
0: हमें हमेशा
1: हाँ,
0: खुशी
1: हमें
0: मिलेगी।
1: बच्चे की जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारी होनी चाहिए, ना कि उसका करियर ऑप्शन। करियर नो डाउट वो अपना अच्छा बना लेगा, लेकिन उसको ये विश्वास होना चाहिए कि हर स्थिति में उसके माँ बाप उसके साथ में है। जहां ये पार्ट मिसिंग लगता है वहीं बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो आजकल ज्यादातर देखने को मिलता है कि हर दूसरे दिन आपको एक खबर मिल जाती है कि इस बच्चे ने सुसाइड किया या डिप्रेशन में हो गया या इसको ऑटिज्म हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो मिसिंग हो जाता है
0: जी,
1: कभी
0: और
1: कभी।
0: कई बार तो हम ये भी देखते हैं, मतलब चीज़ें चूंकि सोशल मीडिया का है, जानकारी आज बहुत है हमारे पास, तो ये इस तरह की चीज़ें भी आती हैं कि जो हम चाहते थे वो भी मिल गया, लेकिन वहाँ जाके हमको लगता है कि ये तो नहीं चाहते थे हम।
1: हाँ सर
0: मतलब जो
1: बिल्कुल।
0: चीज़ हम जैसे कहते हैं कि रेगिस्तान में जो मृग मारीचिका होती है कि पानी दिखता तो है लेकिन मिलता नहीं है, लेकिन वहाँ वो सफलताएं, IITN हो जाना, एक अच्छे करोड़ों के पैकेज, ऐसे यूट्यूबर और वो भी हम देख रहे हैं कि जहाँ करोड़ों के पैकेज है लेकिन मन का सुकून और शांति नहीं है, तो वो इस कहीं पैसा तो नहीं चाहिए था उनको, कुछ और चाहिए था जो शायद पहले से मिसिंग है। शायद वो हो सकता है वो
1: जी
0: परिवार का प्यार चाहते हो,
1: बिल्कुल सर, जब एक
0: सोसाइटी
1: स्थिति, हाँ
0: का।
1: सर एक स्थिति पे हम ऐसे पहुंचते हैं कि जब हमारे पैसा तो बहुत हो जाता है पर पैसे से जो सुविधाएं होती हैं उनको
0: हाँ
1: भोगने वाला कोई नहीं होता
0: कोई नहीं
1: है।
0: होता है,
1: तो फिर
0: मतलब
1: बात
0: संग
1: वहीं आ
0: नहीं
1: गई,
0: होता
1: संग नहीं हो सकता। और
0: सा।
1: जहां तक बात है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के लिए तो इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी एक चीज को, जैसे चाय पीने के फायदे आप देखेंगे तो आपको चाय पीने के इतने सारे फायदे हर प्लेटफॉर्म पर आपको
0: मिल
1: मिलते
0: जाएंगे।
1: जाएंगे,
0: हाँ
1: और वहीं चाय पीने के नुकसान देखेंगे तो दूसरी साइड आपको नुकसान भी उतने ही देखने को मिल जाएंगे। तो
0: हाँ
1: सोशल मीडिया तो आपको सिर्फ वही दिखाएगी जितना आपको देखना है। अगर आप किसी
0: हाँ
1: का अच्छा देखेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देखेंगे तो बुरा तो कोई देखना ही नहीं
0: मतलब वो
1: चाहता।
0: तो दर्पण की तरह आपको चीजें दे रहा है, दिखा
1: हाँ,
0: रहा
1: आपको
0: है।
1: दोनों फेस सामने रखा है, चॉइस
0: हाँ
1: आपकी कि आप किसको सेलेक्ट
0: तो
1: करेंगे।
0: अब जैसे इसी चीज को मैं बच्चों से जोड़ के देखूं कि भाई बच्चों के पास भी ये है साधन, तो एंड्रॉयड फोन घर में परिवार में बच्चों पे है और पढ़ने के लिए हमने ही दे रखा है उसके, तो क्या समय से पहले वो चीज या अनलिमिटेड समय के लिए वो चीज जो उनके हाथ में है वो नहीं होनी चाहिए? क्योंकि शायद अभी वो विवेक और वो समझ उनमें नहीं है कि जो जानकारी में वो फिल्टर लगा सके कि कौन सी जानकारी का मतलब क्या है, आज मेरे लिए कौन सी जानकारी इम्पोर्टेंट है, किस जानकारी से मुझे बचना है, कौन सी मेरी अच्छी उसके लिए, तो ये फिल्टर कहीं ना कहीं परिवार को, माँ बाप को साथ रह करके ही हम उसको कर सकते, क्योंकि
1: सर
0: एक स्पेस दे देना, ये भी आजकल ये है कि एक अच्छा कमरा दे दिया, एसी कमरा दे दिया, एक टैब दे दिया, लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, अच्छा इंटरनेट का वो लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, तो ये साधन कहीं हद से ज़्यादा तो हमें सुविधा भोग ही नहीं बना रहे, ये चीज़ें कहीं एक हड़ल तो ही नहीं पैदा कर रही संबंधों में।
1: सर एक कहावत होती थी इंग्लिश में, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो जब हम मोबाइल या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो वो हमें उतना ही दिखाता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई तो आप कैसे
0: आप
1: डील करेंगे।
0: कैसे
1: वो सिर्फ
0: करेंगे?
1: हमारे बड़े या हमसे जो एक्सपीरियंस पर्सन थे वही बता सकते थे। तो जब
0: हाँ
1: वो हमारे साथ में होते हैं, जहां हमें लगता है कि किसी भी एग्जाम में अगर जाना है तो मोबाइल हमारा वो इमोशन के साथ में नहीं जुड़ेगा। मोबाइल के सिर्फ हमें ये बता सकता है कि ये आपकी
0: हाँ
1: डेस्टिनेशन है, आपको जाना खुद है, बट किसका हाथ पकड़ के जाना है वो तो होता ही नहीं है। जब तक वो हमें हाथ नहीं मिलेगा तब तक हम कितने भी सफल हो जाएं, उस सफलता के कोई भी मायने नहीं रह जाते हैं।
0: नहीं है। मतलब जीवन में इमोशंस का, संबंधों का, संस्कारों का, सहयोग का, ये अलग है। जैसे बहन भाई, चार बहन भाई परिवार में रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, उस भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो उनको उनके गिरने में सहयोग भी करेगा, याद भी दिलाएगा। पहले तो लोग उन छोटे छोटे शहरों में अपने गली

0: नुक्कड़ और चौराहों की चाय और पान की याद करके लौट आते थे, होली दिवाली अब तो नहीं आते। तो वो चीज़ें जो हमने जिया है, जिसको संबंधों में संस्कारों में, वो याद दिलाती हैं लौट के आने के लिए, लेकिन मोबाइल तो वो चीज़ याद नहीं दिलाएगा।
1: वही सर, मोबाइल में कोई इमोशंस होते नहीं हैं, फिर हम लोग अपनी बच्चों के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपते चले जाते हैं, तो हम कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर डाल दिया। उसका प्रेशर हमें रिलीज करना है, बट वो प्रेशर तो हम खुद ही बनाते जा रहे हैं। आपका प्रेशर हो गया, पढ़ाई का प्रेशर हो गया, सोसाइटी का प्रेशर हो गया, प्लस वो अपने दोस्तों को पीयर प्रेशर हो जाता है कि वो दोस्त उसमें सेलेक्ट हो गया, वो उसमें हो गया, मैं नहीं हो पाया, तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपनी इज्जत और ईगो की बात करते हैं, तो जब ये ईगो इज्जत, ये इतने बड़े बड़े भारी भरकम शब्द जब छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी में आ जाते हैं या टीनएजर्स की जिंदगी में आ जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि उसे कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। और वहां उन्हें अगर कोई गाइडेंस अच्छा नहीं मिलता, उसके बदले में कोई नेगेटिव गाइडेंस मिल जाता है कि अगर किसी ने ऐसा किया या उसने किसी टीवी सेलिब्रिटी के साथ में ऐसा देखा कि उसने क्या किया है, तो वो वही करने की कोशिश करते हैं, वही कोशिश उनको अच्छाई की जगह बुराई की ओर ले
0: बुराई
1: जाती
0: के।
1: है।
0: तो आपको क्या लगता है कि इस अंतिम दौड़, अंतिम भाग दौड़ और एक ऐसी मंजिल जो हमें खुद भी नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, ऐसे में फिर परिवार का माहौल कैसा होना चाहिए? भाई अब परिवार तो जैसे भी है छोटे न्यूक्लियस, तो हम जो हमारे आसपास रह रहा है उससे संबंध बनाए, समाज में हम कम से कम दो अच्छे लोग बना के रखें, कभी कभी बाहर भी जाएं, और साथ ही साथ जो बातचीत है परिवार की वो थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, क्योंकि बच्चों के साथ जो समय हम बिता रहे हैं कम से कम उसमें सकारात्मक तो रहें। वहाँ भी बातचीतें नेगेटिविटी में होती हैं, कर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हो तो बहुत कुछ रहा है लेकिन अच्छा भी हो रहा है। अगर हम शायद उसको अच्छा साहित्य पढ़ लें, कुछ मेडिटेशन कर लें, अच्छे लोगों को, मोटिवेशनल आप जैसे लोगों को सुन लें, तो शायद कुछ बेहतर भी दुनिया में दिखाई देने लगेगा। हम इतना नेगेटिव नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे,
1: सर,
0: हताश
1: इसके
0: नहीं
1: लिए
0: होंगे।
1: बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत बिजी हैं, मान लिया सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, मेरे कहने से एक छोटा सा इनिशिएट करके देखिए कि आप पूरे दिन कितना भी बिजी रहिए, लेकिन खाने के टाइम पे सब लोग साथ बैठिए, अपना मोबाइल अलग कर दीजिए, चाहे वो आधा घंटे के लिए करें, उस टाइम पे जो प्रोडक्टिव बात होती है प्लस खाने का स्वाद होता है, वो आपको इतना पॉजिटिव एनर्जी देगा कि जिससे आप और आपके बच्चों के बीच में एक कनेक्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ उसके साथ पूरे दिन में क्या हुआ, आप पूरी बिजी लाइफ में से सिर्फ 15 मिनट भी अगर बच्चे से ये पूछ लेते हैं कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, बच्चे उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। संडे में या छुट्टी में थोड़ा सा टाइम निकालिए बच्चे के साथ में, और इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि माँ या बाप में से कोई भी एक अगर बच्चे की पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दे, फोकस ना भी करे, बस उसको एक टास्क
0: बस
1: बेस्ड
0: उस
1: दे के जाए कि आज
0: हाँ
1: तुम्हें मैं ये सुनूंगा और
0: हाँ
1: तुम्हें आके ये बताना है, अगर इतना सा टास्क दे के आएगा तो बच्चे के दिमाग में एक डर रहता है कि पापा आके सुनेंगे या मम्मी आके सुनेंगी। ट्यूशन टीचर भी वो नहीं दे सकता है, स्कूल टीचर भी नहीं दे सकता, फिर वही बात आ जाती है, कहीं ना कहीं ये सीढ़ी घर से ही शुरू होती है, जिसमें माँ बाप का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है।
0: जी, इसीलिए शायद माँ को पहला शिक्षक कहा गया है कि भाई
1: बिल्कुल सर,
0: परिवार
1: बिल्कुल।
0: अगर अपनी जिम्मेदारी निभा ले तो शायद समाज और जो संस्थाएं वो भी अच्छे से और बेहतर से निभा पाएंगी। हम अगर अपना जो उत्तरदायित्व तो है उसको खो देते हैं, छोड़ देते हैं या किसी दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं, तो फिर चीज़ें नीचे की तरफ जाती हैं, गिरावट
1: बिल्कुल
0: की
1: सर, जब
0: तरफ।
1: हम लोग छोटे थे हमारे टाइम में फोन नहीं थे, तो क्या हमारा जीवन आजकल
0: सही
1: सफल नहीं
0: बात
1: है?
0: है।
1: सबका सफलता है, सुविधाएं जितनी ज्यादा दी जाएंगी उतना ही लाइफ सुविधाजनक बनती चली गई, लेकिन अगर थोड़ी सी हार्डशिप लाइफ में नहीं होगी तो बच्चे सीखेंगे ही नहीं कि गिर के उठते कैसे हैं।
0: उठते कैसे
1: आप
0: हैं?
1: उनको सिर्फ उठना ही उठना सिखा रहे हो, तो जब वो एक बार गिरते हैं उस सिचुएशन से वो कोप अप नहीं कर
0: जी,
1: पाते हैं।
0: उनको बताते नहीं, गिरेंगे तो फिर लगती भी है थोड़ी सी,
1: हाँ, वो
0: फिर वहां
1: नहीं
0: मरहम
1: निकाल,
0: पट्टी भी
1: गिर भी गए
0: चाहिए,
1: तो गिर,
0: किसी कोई
1: हाँ
0: उठाएगा, कोई थोड़ा सा आपको सहयोग
1: नहीं,
0: देगा।
1: एक्चुअली सर यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आजकल गिरते भी ना, तो हम बच्चे को ये नहीं कहते कि गिर गया तो कोई बात नहीं, हम कहते तो नहीं, रोना नहीं है, गिर गया, चींटी मर गई है, अरे उसको समझाओ कि गिरा है तो लगती है और लगने से दर्द भी होता है, तुम्हें इसे
0: और फिर
1: संभल के चलना
0: वहां
1: है,
0: फिर थोड़े उसकी जरूरत पड़ती
1: वहां
0: है
1: प्यार की भी जरूरत होती है, और
0: जी।
1: वहां इस सिचुएशन को अगर हम हैंडल नहीं करते और ये कह देते कि नहीं, गिर गया इसको हम मारेंगे, क्यों मारेंगे, उसको समझाओ कि गिरते हैं तो दर्द होता है और तुम्हें ये
0: दर्द,
1: समझना है।
0: और गिरने में कई बार हमारी गलती भी हो सकती है,
1: बिल्कुल सर,
0: हमेशा कोई दूसरा ही नहीं
1: वही वही,
0: गिराता, गलती हमारी भी हो
1: हाँ, तो
0: सकती
1: सर
0: है।
1: ज्यादातर गलती हमारी होती है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है,
0: जी, तो
1: तभी
0: श्वेता
1: हम
0: जी
1: अच्छे बच्चे
0: आपसे
1: पाएंगे।
0: बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है।

0: लेकिन ये बच्चों का परवरिश का, परिवार का और आगे बढ़ने का ये बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, बड़ी लंबी चर्चाओं का विषय है। चूंकि समय कम है तो चलते चलते कुछ और कहना चाहें बच्चों से या परिवार
1: सर, बस मेरा यही कहना है कि माँ बाप का पूरा सहयोग, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वही पूरे
0: से।
1: राष्ट्र का भविष्य हैं या राष्ट्र की उम्मीद हैं। यही बच्चे आगे जाके कुछ बनेंगे, और कुछ नहीं भी बने तो माँ बाप के लिए वही एकमात्र सहारा है। तो उन्हें ऐसा बचपन दीजिए कि बचपन उनका यादगार रहे, जैसे हमने बचपन जिया और आज भी हम उसको याद करते हैं, मिस करते हैं अपनी लाइफ में। वो मोमेंट, वो मेमोरी अपने बच्चों की लाइफ में भी देनी चाहिए, जिससे वो भी आगे जाके ऐसा करें। हमें ये नहीं सिखाना है कि जो हमने नहीं किया वो बच्चे जरूर
0: बच्चे
1: करें,
0: हाँ
1: जो हमने नहीं किया वो भी बच्चे करें, और जो
0: हाँ
1: हमने किया वो भी बच्चे
0: वो भी
1: करें,
0: बच्चे करें, तो मतलब
1: तो ही
0: कुल
1: एक
0: मिला
1: अच्छा
0: एक
1: नागरिक
0: अच्छा
1: बनेगा।
0: नागरिक बना दे,
1: बिल्कुल सर, अच्छा
0: अच्छी
1: इंसान बन
0: हाँ
1: जाए,
0: समाज की समझ
1: उसको
0: उनको
1: सबको
0: पैदा आ जाए।
1: सम्मान देना आना चाहिए, उसको इमोशन समझ में आने चाहिए, उसको फाइनेंशियल पापा ने कितनी मेहनत से ये चीजें हमें ला के दी हैं, उसको ये समझ आना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बस एटीएम का एक बटन दबाएंगे और पैसा मिल जाएगा। उसको
0: पैसा
1: पता होना चाहिए कि पैसा कैसे आता है,
0: कैसे आता है,
1: चीजों को कैसे संभाला जाता है, कहीं अगर गलत चीजें हो रही हैं तो उन पे आवाज कैसे उठाई जाती है वो भी उतना ही जरूरी है, कहीं गिर जाएंगे तो कैसे उस चीज को हमें संभालना है वो भी जरूरी है, फेल हो जाएंगे तो फेल के बाद दोबारा कैसे खड़े होना है
0: ये भी
1: सबसे
0: जरूर।
1: ज्यादा ये भी जरूरी है।
0: तो साथियों, हम किसी के दुख में थोड़ा सा रो सके, किसी की खुशी में हम आंसू भी बहा सके, तो ऐसा एक नागरिक, ऐसी एक समझ और ऐसा एक उत्तरदायित्व बोध कि हम किसी से अलग नहीं है, हम सबके साथ मिले जुले हैं, हम हर किसी का हिस्सा हैं, परिवार का ही नहीं समाज का भी। तो ये समझ जब हम शिक्षा से, अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से और परिस्थितियों से सीखते हैं, तो निश्चित तौर पे हर चीज़ में हमें कुछ सीखने का अवसर मिलता है। सफलता भी सिखाती है, असफलता भी सिखाती है, लेकिन दोनों को हमें
1: साथ लेके
0: साथ
1: चलना
0: लेके
1: है,
0: चलना है
1: और जहां
0: उनसे।
1: दोनों के पार्ट मिसिंग हो वहां करियर काउंसलर की आप हेल्प लेने से बिल्कुल भी ना चूकें, कोई शर्म नहीं है, आप अपनी बातें शेयर करें।
0: जी, तो श्वेता जी, आप आई अपने विचार से, अपनी वाणी से और अपने अनुभव से हमारे युवा साथियों से जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
0: नमस्कार।
2: तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे मार्गदर्शन के अंतर्गत भेंट वार्ता, बच्चों के व्यवहार पर पारिवारिक एवं शिक्षण संस्थानों की भूमिका। इस भेंट वार्ता में श्वेता कुलश्रेष्ठ से भेंट की ओपी सिंह ने, और आइए अब चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

आपने सुना ये गीत तुलसी कुमार की आवाज में, और इसी के साथ कार्यक्रम युववाणी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत

0: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती। रात्रि 10:00 आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

संध्या 6:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस और गर्मियों में पशुओं का खास रखें ध्यान। साथ ही साथ सुनिएगा भेंट वार्ता, जिसका विषय रहेगा गर्मियों में कलीलियों से होने वाले रोग एवं बचाव, साथ ही साथ प्रबंधन। इसमें जितेंद्र सिंह गांधार से भेंट करेंगे विजय सिंह नौलखा। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:45। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में संध्या 7:05 पर आप सुन सकते हैं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कृष्ण बलराम मथुरा गमन, इस विषय पर प्रसंग। कथाकार होंगे कृष्ण बिहारी पाठक। शाम सुहानी, श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:20 पर। हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति परक रचनाएं।

एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:30, रात्रि 9:15 पर सुनिएगा सुहानी तराने। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देश गान।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं रूप किशोर शर्मा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम। भैया, मौसम को हाल तो आप जान ही रहे हो, कल दिन में हैवी बारी बूंदाबांदी थे, कछु गर्मी थे, राहत है, पर भैया हमें फिर सावधान रहना है मौसम थे, क्योंकि अभी जेठ को महीना तपेगा। भैया, आलू सब्जीन को राजा कहो जावे और आलू दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जो फसल होएं इनमें एक मानो जाए, और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आलू की कर रहे हैं, क्योंकि भैया आज है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। आलू की उत्पत्ति लगभग 8000 साल पहले दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला में भई, जाकू वर्तमान में आधुनिक पेरू और बोलीविया के हो जावे। 16वीं शताब्दी में ये आलू यूरोप पहुँचो और फिर धीरे धीरे करके संपूर्ण विश्व में फैल गयो। संयुक्त राष्ट्र सभा ने दिसंबर 2023 में एक प्रस्ताव पारित कियो और वह प्रस्ताव में कहो कि प्रतिवर्ष 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जावेगा और पहलो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गयो। यह दिवस के काजे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की ओर से जाके विषय निर्धारित किए गए। 2024 में जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया तो भैया याकी जो थीम ही वो एक विविधता की कटाई और आशा का पोषण। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की थीम बनी इतिहास को आकार देना और भविष्य को पोषण देना। लेकिन किसान भैया, वर्ष 2026 की जो थीम है वो है कि जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है, और बात आजीविका की फलवे फूलवे की है तो भैया आप जी ने समझो कि आलू का उपयोग अब केवल अपने भोजन में ही है रोए। आलू के

स्टार्च से अब बायो प्लास्टिक बनाई जा रही है, जो हमारी पारंपरिक प्लास्टिक को एक बेहतरीन और टिकाऊ विकल्प है। आलू का उपयोग अब भोजन नाए भोजन ते हटके बाको प्रयोग किया जा रहा है, या को उपयोग फूड कंटेनर और दवा के कैप्सूल बनावे में किया जा रहा है, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल और ग्लूटेन मुक्त हुए जाके काजें आलू भविष्य के उद्योग के काजें एक वरदान साबित है रहे हो। तो ये तो चर्चा रही भैया अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के बारे में। और जब भैया आलू की पैदावार, आलू की लागत, आलू की आमदनी बढ़ेगी तो मन प्रसन्न होएगो, तन प्रसन्न होएगो और मन करेगो या ब्रजमंडल की दर्शन करवे के काजे। तो ऐसा ही एक लोकगीत हम आपको सुनवा में घनश्याम शर्मा मधुप के स्वर ते सजायो जी एक लोकगीत के, ये ब्रज वृंदावन धाम वास झांसी वशवान दुलारी को। तो भैया सुनो जा लोकगीत को।

0: ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ ਵਾਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨ ਦੁਲਾਰੀ ਕੋ ਜਾਲੂ ਗੀਤ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਤੇ ਸਜਾਇਓ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਮਾ ਮਧੁਪ ਨੇ। ਭਈਆ ਬਾਤ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਏ ਢੋਰ ਕੀ, ਤੋ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਪੋਏ ਢੋਰ ਕੋ ਗਰਮੀ ਮੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਨਕੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਨ੍ਹੇ ਦਿਨ ਮੇ ਕਾਊ ਪੇੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਬਾਂਧੇ, ਕਾਊ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਾਂਧੇ ਕਿ ਜਹਾਂ ਉਨਕੂ ਸੀਧੀ ਬਿਆਲ ਲਗੇ, ਗਰਮ ਲੂ ਲਗੇ, ਉਹ ਟਕਤੇ ਬਾਂਧੇ। ਅਗਰ ਹੈ ਸਕੇ ਤੋ ਉਨਕੂ ਪੰਖਾ ਕੀ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹੇ ਕਮ ਤੇ ਕਮ ਦਿਨ ਮੇ ਤੀਨ ਵਾਰ ਸਾਦਾ ਔਰ ਸਵੱਛ ਤਾਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਵੇਂ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਉਨਕੂ ਨਹਿਲਾਵੇਂ ਔਰ ਉਨਕੂ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇਤੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੋ ਭਈਆ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਉਨਕੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਮੇਂ। ਔਰ ਸਾਮਾਨਿਆ ਸੀ ਬਾਤ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਭਈਆ ਇਨ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਕੋ ਤੋ ਕਰਿਓ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜੋ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਏ ਵੇ ਹਮਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਗ ਜਾਓ ਕਰੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਗਰਮੀ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਂ ਪਰਜੀਵੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਾਵੇਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪਰਜੀਵੀ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਈਆ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੋਏ ਕਲੀਲੀ। ਬ ਕਲੀਲੀ ਤੇ ਹਮ ਕੌਨਸੇ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਵਾਤੇ ਬਚਾਵ ਕਰੇ, ਵਾਤੇ ਕੈਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇਂ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੇਂ ਆਜ ਹਮ ਆਪਕੂ ਇੱਕ ਭੇਂਟ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀਓ ਮੇਂ ਕਲੀਲੀਓ ਸੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਔਰ ਬਚਾਵ ਔਰ ਉਨਕੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧਾਰ ਔਰ ਇਨ ਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੌਲਖਾ। ਤੋ ਭਈਆ ਸੁਣੋ ਜਾ ਭੇਂਟ ਵਾਰਤਾ ਕੋ, ਗਰਮੀਓ ਮੇਂ ਕਲੀਲੀਓ ਸੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਔਰ ਬਚਾਵ ਏਵਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को हमारी राम राम। पशुओं में किस तरह की व्याधियां इस समय हो जाती हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंधार जी को। आप सहायक प्राध्यापक हैं वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा के अंदर। तो डॉक्टर साहब राम राम।
2: राम राम, नमस्कार जी।
1: तो डॉक्टर साहब, जो आजकल आपके पास विश्वविद्यालय की जो क्लिनिक है उसमें किस तरह के व्याधिग्रस्त पशु आ रहे हैं?
2: जैसे अब जैसे गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो इस टाइम पे जो हमारे पास जो टिक बॉर्न डिजीज़ होती है, मतलब जो कलीली होती हैं, इनसे जो बीमारियां फैलती हैं उसके केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनमें मुख्यतः अगर आप देखेंगे केसेस को तो एक थिलेरिया होता है जो एक बुखार की तरह होता है, और दूसरा एक बबेसिया होता है जिसमें लाल पेशाब आता है। तो मुख्यतः ये हमारे पास बहुत सारे केसेस बहुत नंबर में हमारे पास देखने को मिल रहे हैं।
1: तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर साहब, जैसे थिलेरिया के बारे में बताया, इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह से किसान भाई समझें इसे?
2: मैं इसके बारे में इस पर थोड़ा सा मतलब अपनी जानकारी दूंगा। थिलेरिया बीमारी पे ये जो बीमारी होती है मुख्यतः इसके बारे में देखा जाए तो ये क्रॉस ब्रेड जो संकर नस्ल की जो गाय होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है देसी के मुकाबले। देसी पशुओं में हमारे में क्या होता है, जो टिक बॉर्न डिजीज होती हैं, जो कलीलिया इनसे बीमारी होती हैं, इनके प्रति थोड़ा प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो जो क्रॉस ब्रेड जो गाय होती हैं, संकर नस्ल की गाय होती हैं, उनमें बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। इस बीमारी में अगर आप देखेंगे तो ये बीमारी इसमें मुख्यतः बुखार बहुत तेज होता है पशु को।
1: जी जी।
2: तेज बुखार होने के साथ साथ पशु का दूध चला जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, नाक से पानी बहता है उसके। तो मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो इसमें बुखार बहुत तेज होता है पशु का। आप पशु का इलाज भी कराएंगे, अगर बुखार का अगर आप इलाज कराएंगे उसके बावजूद भी उसका बुखार उसका तुरंत वापस आके फिर उसको बुखार बना रहता है। तो इसका अगर आप जांच पूरी तरीके से करा के अगर हम इसके जो मुख्य दवाई जो इस पर काम करती है जो उस पर इस ऑर्गेनिज्म पे अगर उसका अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ये बुखार बना रहेगा
1: जी।
2: पशु में खून की कमी देखने को मिलती
1: है। ये उसी कलीली की वजह से?
2: बिल्कुल। कलीली में क्या होता है, कलीली में एक पैरासाइट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं थिलेरिया अनुलाटा, एक प्रोटोजोआ होता है
1: जी जी।
2: थिलेरिया अनुलाटा नाम का ये कलीली अपने अंदर इसको पालती पोसती है, तो

0: जो इन्फेक्टेड कलीली होती है वही इस बीमारी को सीधे जब वो खून चूसती है गाय और भैंस से, तो वो सीधे इसको कली उसके पशु के अंदर डाल देती है इसको। तो इससे जो जो जो प्रोटोजोआ होता है फिर उसके अंदर जाके ये बॉडी में बहुत सारी जो जो क्रियाएं करता है, जिसकी वजह से बुखार आना, खून की कमी होना और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं।
1: और फैलता भी डॉक्टर साहब इन्हीं कलीलियों के माध्यम से।
0: जैसे एक पशु पे मान लो कलीली है जो इन्फेक्टेड है, जो कलीली वो संक्रामक कलीली अगर दूसरे पे चली जाएगी तो वो उस दूसरे पशु को भी इन्फेक्टेड कर देगी।
1: जी जी जी।
0: तो एक कलीली से दूसरे पशु अगर शिफ्ट होती है तो उसको बीमारी को फैलाती है।
1: अब इसके रोकथाम की या उपचार का क्या तरीका है?
0: देखो रोकथाम का उपाय तो है, जैसे कि मैं बार बार अपने उसमें बता रहा हूँ कि ये कलीली से फैलने वाली बीमारी है, तो हमें सबसे पहले पशुओं पर कलीलियों को रोकना है, पशुओं पर कलीली ना आए। और कलीली रोकने का जैसे हम देखते हैं अक्सर करके हमारे पास बहुत सारे किसान भाई आते हैं कि हम दवाई लगाते हैं तो कलीली कुछ दिन के लिए खत्म हो जाती है लेकिन उसके बाद फिर दोबारा कलीली आ जाती है। तो कलीली के अगर कलीली आपको पूरी तरीके से खत्म करनी है तो इसके एक मेथड होता है ऑन द होस्ट और ऑफ द होस्ट।
1: जी।
0: मतलब पशु के ऊपर से भी कलीली खत्म करनी होती है और पशु के जो चारों तरफ उसकी सराउंडिंग होती है, जैसे जहां पशु को बांधते हैं, तो कलीली की खास बात क्या होती है कि जो कलीली होती है वो अंडा देती है, खास करके जो दरारें होती हैं
1: जी जी,
0: जैसे छुपे हुए के छुपने वाली जो जगह होती है वहां पर कलीली अंडा देती है। जैसे दीवार होती है, दीवार की दरारें हुई तो वहां पर कलीली, जैसे खड़ंजा होता है नीचे पशुओं के नीचे, वहां अंडा देती है। तो एक कलीली लगभग 8 से 10 हजार अंडे देती है
1: जी।
0: तो हम पशु के ऊपर तो दवाई लगा देते हैं, वहां से कलीली खत्म हो जाती है, लेकिन जो नई कलीली जो पनप रही है जो अंडे में से निकलेंगी वो फिर दोबारा से जाके पशु के ऊपर चढ़ जाती है, उसके बाद फिर दोबारा फिर कलीलियों का प्रकोप पशु के ऊपर देखने को मिलता है।
1: जी जी जी।
0: तो हमें पशु के ऊपर के साथ साथ कलीलियों का नीचे भी हमें उनको
1: जो पशुशाला है उसके अंदर जो दीवारें हैं उसमें दरारें हैं, ईंटों के बीच में जो गैप है उसमें
0: वहाँ पे भी इलाज करना है।
1: तो उसमें क्या करें डॉक्टर साहब?
0: तो उसमें जैसे दवाई जो आती है जो हम पशुओं के ऊपर लगाते हैं, जो भी हमारे पास इंसेक्टिसाइड आते हैं, उनको हमें क्या करना है, जो जैसे दवाई देने वाली जो मशीन आती है खेतों में जिससे हम दवाई देते हैं, स्प्रे करते हैं, उससे लेके हम उस दवाई को वहां भी छिड़क सकते हैं। जैसे दीवार है तो उसपे 4 फीट तक दीवार पे छिड़क सकते हैं, नीचे अगर उसके नीचे अगर ईंटों का खड़ंजा हो रहा है तो उसपे भी हम उसको छिड़क सकते हैं उस स्प्रे की मदद से। तो इससे कलीली उसके ऊपर से भी खत्म हो जाएंगी और पशु उसके नीचे से भी खत्म हो जाएंगी जो अंडे देने वाली है, तो नई कलीली जो बन रही है वो भी खत्म हो जाएंगी।
1: अच्छा, एक और बीमारी का जिक्र किया था डॉक्टर साहब अभी आपने।
0: हाँ, अभी मैं इसका थोड़ा सा इलाज बताऊंगा इसका। जैसे अब ये बीमारी अब हो गई, ये तो बचाव है। अगर बचाव हो जाता, देखो एक कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर बचाव होता है, बचाव सस्ता भी होता है और हर तरीके से अच्छा भी होता है। अगर किसी भी पशु को अगर ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, अगर कलीली है उसके, खास करके जो संकर नस्ल की गायें होती हैं, तो उनमें अगर कलीली बनी हुई है, बहुत सारी कलीलियों का अगर उसके ऊपर बॉडी पे प्रेजेंट है और उसको बुखार है, उसका बुखार नहीं टूट रहा है, ठीक है, और आंखों से पानी आ रहा है उसके, और या आंखें बाहर निकली हुई हैं या नाक से पानी आ रहा है, तो फिर उसको नजदीकी पशु चिकित्सालय से जाएं और डॉक्टर से सलाह लें और उसकी जांच करा के उसके खून की जांच, क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ होता है ये खून में पता चल जाता है
1: जी।
0: तो सिंपल अगर जाके पशुपालक अगर खून भी ले जाता है अपना, इसकी एक स्पेसिफिक वायल आती है, उस वायल में अगर जाके खून ले जाता है अपना, खून की जाँच कराता है, तो उससे इजीली जांच हो सकती है और उसकी, और इसका इलाज बड़ा पक्का इलाज है इसका। मतलब इसकी दवाई है बहुत, मतलब इसके लिए वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो। अगर वो बीमारी की जांच हो गई, आप उस दवाई को लगा दो, तो ये मान के चलिए पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा।
1: जी।
0: इसका इलाज भी है और इसका बचाव तो सबसे अच्छा है, अगर बचाव करेंगे तो।
1: जी जी। कहने वाली बात यह है कि ऐसे लक्षण अगर कोई किसान भाई देखता है अपने पशुओं में तो तुरंत सरकारी अस्पताल में, या फिर आपने बताया कि अगर संभव हो तो उसके खून का एक नमूना लेके वहां दिखा सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक और बीमारी का आपने जिक्र किया था शुरू में ही, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: दूसरी बीमारी जो होती है वो भी खास करके टिक्स के द्वारा फैलती है, वो उसका नाम है बबेसिया। ये जो बबेसिया होती है इसको मतलब हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं लहू मूतना।
1: अच्छा।
0: इसमें क्या होता है कि रेड यूरिन बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो पेशाब होता है पशु का वो लाल रंग का पेशाब होता है, कॉफी कलर यूरिन भी बोलते हैं उसे कई बार, तो उसमें क्या होता है, ये बीमारी भी टिक से फैलती है।
1: अच्छा।
0: इसमें अगर लक्षण की बात करोगे तो इसके लक्षण भी मिलते जुलते इसी की तरह हैं इस पर, लेकिन टिक अलग होता है इसका। जैसे
1: अच्छा।
0: उसका टिक होता है वो अलग होता है, जैसे हम तो देख के पहचान लेते हैं कि किस तरह की कलीली इसके ऊपर उपस्थित है, तो उससे भी पता चल जाता है कि किस तरह की बीमारी है। इसमें मुख्यतः आप देखोगे लक्षण मिलेंगे, इसमें भी बुखार होगा, जो बुखार नहीं टूट रहा होगा पशु को, ये बुखार होगा 104-105 डिग्री फारेनहाइट तक बुखार देखने को मिलेगा। इसमें साथ के साथ इसमें पशु में लाल रंग का पेशाब देखने को मिलता है।
1: जी, ये इसकी
0: बिल्कुल ये पिक्यूलियर फाइंडिंग है इसकी, मतलब ये इसकी सबसे मुख्य लक्षण है कि इसमें, इसलिए इसका नाम लहू मूतना भी है इसका।
1: जी जी।
0: साथ में पशु का दूध सूख जाता है, पशु चारा नहीं खाएगा, पशु डिप्रेस होगा, और भी बहुत सारे लक्षण है जो उसको, और साथ में उसको एनीमिया देखने को मिलेगा, मतलब जब उसका खून निकलेगा उसका पेशाब

0: में तो उसके शरीर में खून की कमी होगी, जिसकी अगर ज्यादा खून की कमी होने से उसे सांस लेने में तीव्र गति से उसका श्वसन चलेगा उसका, और कई बार दिमाग के लक्षण भी आना शुरू हो जाते हैं जब बहुत ज्यादा सीवियर अगर उसको खून की कमी हो जाती है तो
1: जी।
0: तो इसमें भी अगर आप बचाव की बात करेंगे तो बचाव तो देखो कलीली जैसे, ये भी कलीली से फैलने वाली बीमारी है, तो इसका भी बचाव यही है कि हमें कलीलियों को पशु के ऊपर नहीं रखने देना है, क्योंकि जो कलीली होती है देखो कई उसमें नुकसान पहुंचाती है। एक तो ये जैसे पशु इतनी मेहनत से चारा चारे को पचाता है, हम पशुपालक है अपनी गाड़ी कमाई से पशु को बहुत सारे मतलब विटामिन मिनरल और अपना डाइट खिलाता है उसको, तो वो उसमें से पूरा क्रीम वाली चीजें कलीली अपना चूस लेती हैं खून में से, तो एक तो पशु के शरीर पर वैसे नुकसान पहुंचता है
1: जी।
0: दूसरा फिर जब ये बीमारी फैलाती हैं तो इसलिए इसका बड़ा सस्ता उपाय है, कलीलियों की मार्केट में बहुत सारी दवाई उपलब्ध हैं। अगर हम बात करेंगे तो कुछ दवाई आती है जो पशु के ऊपर लगा सकते हैं हम कपड़े से पानी में मिला के, जैसे अमेट्राज करके दवाई आती है उसको 3 ml 1 liter पानी में मिला के पशु को आप कपड़े से उसके लगा सकते हैं। और ये कलीली मुख्य तो होती है आप देखेंगे उन जगह पर पाई जाती है जैसे जैसे वो आयन होता है आयन और पैर के बीच में पाई जाएंगी जहां वो दिखे ना
1: जी जी।
0: तो पशुपालक को ध्यान रखना है जब उसको कलीली की दवाई जैसे वो कपड़े से लगा रहे हैं तो उसको ऐसी जगह पे जरूर लगाएं जो छिपने की जगह होती है, जैसे जहां स्किन फोल्ड होते हैं स्किन जहां इकट्ठी होती है उनके बीच में। दूसरा दूसरी तरह की दवाई इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, इसका आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है। तो ये देखो एक तो ये खुद यूज नहीं करने, किसी डॉक्टर की सलाह के साथ यूज करने है, क्योंकि ये डोज डिसाइड होती है एनिमल के वजन के हिसाब से। तो अगर पशु का वजन कम है कितना है तो वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही उसको यूज करें। तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, इसको खाल के अंदर लगवा सकते हैं। तीसरा अगर हम देखेंगे तो एक पोरोन आती है और रीढ़ के नाम से आती है, जिसको रीढ़ की हड्डी पे पूरा डाल सकते हैं, इसको रीढ़ की हड्डी पे डाल के उसे छोड़ दें, उससे कलीली अपने आप पूरे शरीर से कलीली अपने आप उसको छोड़ देती है उसको जानवर को। तो इसलिए सबसे पहले तो कलीली का बचाव करें। अगर बीमारी होती है तो इसका भी इलाज बहुत अच्छा है उपलब्ध है इसका इलाज। अगर बीमारी होती है तो डॉक्टर से जाके उसको बताएं पूरे लक्षण जितने भी हैं, क्योंकि ये जो लाल पेशाब है ये केवल इसी में नहीं मिलता और भी कई सारी बीमारियां होती हैं। तो उनको फिर हम दूसरे जो अदर सिम्टम होते हैं जैसे हमारे पास बुखार आ रहा है उसमें या कुछ और जो हमारे पास लक्षण है या फिर हम जाँच की मदद से उनको रूल आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास अगर कंफर्म हो जाता है कि ये बबेसिया का केस है तो इसकी भी दवाई आती है, इसको समय रहते अगर इलाज कराया जाता है तो पशु एकदम स्वस्थ हो जाता है।
1: और कहने वाली बात यह है कि ये जो कलीलियों से फैलने वाली है यानी टिक से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, अच्छा तो यही रहेगा किसान भाई कि हम अपने किसान भाइयों को पहले भी समय समय बताते रहे हैं कि भाई आप इनका नियंत्रण जो है बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी का नियंत्रण समय समय पर करते रहें, और न सिर्फ पशुओं के ऊपर आप इसको नियंत्रण के उपाय करें बल्कि पशुशाला की जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कीटनाशक डाल के जो दरारें हैं या महीन बारीक जो छेद हैं उनमें इनका प्रजनन होता है तो उनको भी वहां पर भी दवाई का स्प्रे कर दें जिससे ये मर जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्मी का मौसम है ही और गर्मी खूब पड़ भी रही है तो इस समय पशुपालकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जनरल अगर वो अपने पशुओं का की व्यवस्था करते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखें?
0: देखो गर्मी में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें पशु का जो टेम्परेचर होता है, जैसे बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो हमें एक तो जो लू चलती है, जैसे अब लू चलना अभी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, कुछ थोड़ा कुछ दिन चली भी है अभी, तो जैसे लू चलती है तो हमें पशु डायरेक्ट लू के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर पशु लू के कांटेक्ट में आएगा तो उस पशु का टेम्परेचर बढ़ने के चांस होते हैं, हाइपरथर्मिया होता है जैसे हीट स्ट्रोक होता है उसके आसार होते हैं उसके। तो हमें एक तो पशु का लू से बचाव करना है कि पशु डायरेक्ट लू के कांटेक्ट में ना आए। दूसरा पशु को हमें हरा चारा देना है, हरा चारा क्योंकि मुख्यतः हरे चारे में पानी होता है। अब गर्मी के समय में पशु जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है बाहर का वातावरण का तो पशु में पानी की समस्या होती है, तो इसलिए जो हरा चारा इस टाइम पे उपलब्ध जैसे चरी है ज्वार है जो भी हरा चारा उपलब्ध है हमें पशु को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा खिलाना है, तो जितना हरा चारा हरे चारे में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है
1: जी।
0: तीसरी चीज अगर हम ध्यान रखेंगे इस टाइम पे तो गर्मियों में हमें पशु को ठंडे पानी पिलाना है उसको
1: जी।
0: ऐसा नहीं पानी बहुत समय धूप में रखा हुआ है पानी को पिलाएंगे तो जानवर कम पानी पिएगा और ऊपर से मौसम का भी उस पर गर्म मौसम की भी मार रहेगी उस पर तो उसमें पानी की कमी देखने को मिलेगी। तो हमें कोशिश करनी है पशु को ठंडा स्वच्छ और फ्रेश वाटर दिया जाए जिससे पशु ज्यादा से ज्यादा पानी पिए तो उसमें पानी की कमी ना रहे
1: जी जी।
0: तो मुख्यतः हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि पशु
1: नहला भी नहलाना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, पशु को अगर नहलाना है ठंडे पानी से तो कोशिश करो कि उसको सुबह और शाम के टाइम नहलाएं
1: जी।
0: मतलब ऐसा नहीं है कि दोपहर के टाइम नहला रहे हैं उससे, तो उससे और ज्यादा उसके पानी की कमी हो सकती है और उसका टेम्परेचर पशु का बढ़ सकता है
1: जी।
0: तो कोशिश करिए कि उसे सुबह के टाइम नहलाएं और उसको शाम के टाइम नहलाएं।
1: तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जो हमारे पशुपालक भाई हैं

0: वो अपने पशु से ठीक उत्पादन, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो जितेंद्र जी, आज आपने जो जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी भैया सुन रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गांधार को, और इनसे बातचीत कर रहे विजय सिंह नौलखा। गर्मियों में कलीलियों से होने वाले रोग और बचाव एवं प्रबंधन। और भैया अब सुनो दामोदर शर्मा की स्वर ते सजाया जी एक लोकगीत। श्री ब्रज मंडल को जाए ब्रज रज तन में लूं लपटाए, प्रात में जमुना नहाऊं, संग संतन को पाऊं।

रात में जमुना नहाऊं, संग संतन को पाऊं, जालू गीत को अपने स्वर से सजाए दामोदर शर्मा ने। और भैया अब हमें स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है अपने जा कार्यक्रम को समापन के काजें, तो करें सब भैयान को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे रूप किशोर शर्मा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

साहित्यिक। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कृष्ण बलराम मथुरा गमन प्रसंग। कथाकार हैं कृष्ण बिहारी पाठक।

इसी भक्ति रचना के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज

परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तरद्युत विनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण। सज्जनों, जब कंस हर प्रकार से परेशान है गयो, बाने विचार करो कैसे हूँ कृष्ण बलराम को वो मानना है, कहा करूं, कोई उपाय ना सूझ रहे हो। जाके मन में एक विचार आया, लोगों ने सलाह दी, जाके जो मंत्रिमंडल में है उनने सलाह दी नहीं, बोले ऐसा करो तुम कोई धनुष यज्ञ को कार्यक्रम रखो, बामे कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाओ और मथुरा में हम सबरे जो राक्षस हैं, जो सबरे गण हैं आपके, वो मिलके और कृष्ण बलराम को मार देंगे। कंस की यह बात बड़ी समझ में आई। कंस ने विचार कीनो, आखिर कृष्ण बलराम को लेवे जाएगो कौन। काऊ ने सलाह दी, महाराज अक्रूर इनके चाचा लगे हैं, अक्रूर को भेजो, अक्रूर को महाराज कृष्ण बलराम को लेवे के ताई वृंदावन भेजो है। अब अक्रूर जी लेवे जा रहे हैं कृष्ण बलराम को, मन में विचार कर रहे हैं मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन जब अगर कंस ने कृष्ण बलराम को मार दीनो तो यह अपराध कौन सहन करेगो, ये अपराध को मैं कैसे सहन करूंगो। कृष्ण बलराम मेरे भतीजे लगे हैं, उनको अगर कंस ने मार दियो तो मैं कहां मोह दिखाऊंगो यदुवंशियन में। या प्रकार से विचार करते हुए अक्रूर को रथ महाराज सुबह चलो है और संज्ञा को वृंदावन पहुंचो है। जैसे ही अक्रूर को रथ पहुंचो है वृंदावन में, तो महाराज सबसे पहले कृष्ण बलराम मिले। कृष्ण बलराम ने अक्रूर चाचा को प्रणाम कीनो है, प्रणाम करके अक्रूर जी ने आशीर्वाद दीनो है। मन में बड़ा उत्साह है, आज वो परात पर ब्रह्म आज मुकु प्रणाम कर रहे हैं, मैं कितनो भाग्यशाली हूं। या प्रकार से विचार करते हुए जैसे ही नंद बाबा से मिले, नंद बाबा माँ यशोदा से मिले और नंद बाबा को बतायो कंस ने भेजो है, कृष्ण बलराम को बुलायो है, बाकी यहाँ एक धनुष यज्ञ को कार्यक्रम है, बा में कृष्ण बलराम को बुलायो है। महाराज जैसे ही मैया यशोदा ने यह बात को सुनी, मैया की तो महाराज अश्विन की धार बह गई है। मैया ने रोबो शुरू कर दीनो है, मैं काऊ प्रकार से कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं भेजूंगी, क्योंकि वो कुछ कंस दुष्ट है, वो मेरे बालकन को मार देगो। जैसे तैसे रात्रि में मैया रोती रोती सोई है, प्रातः काल भयो और महाराज गोपियों को दो झुंड को झुंड नंद महल के बाहर खड़ो है। जैसे ही अक्रूर जी ने रथ तैयार कीनो है, कृष्ण बलराम को बैठारवे के ताई सबरी गोपियां रथ के सामने लेट गई हैं, रथ के आंगे ना जान दिए हो गोपियों ने। या प्रकार से गोपियां कह रही, महाराज आप हमें छोड़ के मथुरा जाओगे कैसे, हमें छोड़ के आप मथुरा ना जा सको, हम आपके बगैर जिएंगे कैसे। गोपियां के भाव बड़ो प्रबल भाव है, गोपियां कह रही आप मथुरा जाओ खूब जाओ, लेकिन आप हमारे ऊपर से रथ निकाल दो, मेरे प्राण निकल जाएंगे, फिर आप खूब रथ में बैठ के मथुरा जाओ, जहां इच्छा करे वहां जाओ, लेकिन आप मैं जिंदा रहते हुए आपको मथुरा नहीं आन दूंगी।

मन मोहन नाम धराया है क्यों। गोपियां कह रही, लाला अगर तुम्हें हम तो इतनो ही प्रेम ना हो, इतनो प्रेम नहीं करते तो आज जब मनमोहन नाम क्यों धरो, आपने मेरे मन को मोह लीनो है, अब मुकु छोड़ के आप मथुरा ना जा सको। बार बार कृष्ण बलराम रथ पे बैठवे के ताई तैयार हो, गोपियां रथ के सामने लेट जाए हैं। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे, गोपियन को समझावे, गोपियां समझ जाए थोड़ी देर के ताई, लेकिन जैसे ही रथ हाँकबे के ताई तैयार हो अक्रूर जी, फिर गोपियां रथ पे सवार है जाए, रथ पे रोक लें रथ को, रथ के आगे लेट जाए। गोपियां कह में अहो

था। गोपियां कहवे अरे बाप विधाता को नेकु दया ना है, हम यहां तड़पती भई गोपियन को छोड़ के आप मथुरा जा रहे हैं। अक्रूर जी दे कहवे तुम्हारो अक्रूर नाम कौन ने रख दिनो है, तुम्हारो नाम तो क्रूर होना चाहिए। हमारे प्राणंते प्यारे कृष्ण बलराम को तुम लेके जा रहे हैं, हम आखिर जियेंगे कैसे।

थी। गोपियों ने सभी लज्जन को त्याग दिनो है, गोपियों को कोई परवाह ना है। हमारे ब्रिज में बड़ो जोर से पर्दा हो करे, लेकिन गोपियां जब कृष्ण बलराम को रोकवे के ताई जा रही हैं, उन्हें पर्दा को न को होश ना है, अपनी कोई मान मर्यादा को होश ना है। वो तो विचार कर रही है कैसे न कैसे मैं कृष्ण बलराम को रोक सकूं। गोपियां कह रही हैं,

0: गोपियां कह रही, अगर मुझको ये पता हो तो ना कि प्रीत करे में दुख होए तो मैं आपसे प्रीत करती ना है महाराज, आप मुकू इतनी मोते प्रीत की नहीं है, और आज बा प्रीत को तोड़ के तुम वृंदावन से मथुरा को जा रहे हैं, अगर हम जिएंगे कैसे। सज्जनों, गोपियन को जो प्राण है ना गोपियन के, वो केवल कृष्ण बलराम है। गोपियां तो यहां तक कह में बोले मुँह और काउ थे मतलब ना,
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कृष्ण बलराम मथुरा गमन प्रसंग। कथाकार थे कृष्ण बिहारी पाठक।

बबीता शर्मा के स्वर में अभी आपने सुना ये लोकगीत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, यह सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा

0: तथा जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonairlaw.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
1: जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उसके सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिल पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
2: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में को ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
3: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक स्वदेशी विकास है, प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: The FM 102.4

लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम शाम सुहानी सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके संदेशों, फरमाइशी गीतों और बहुत सारे संदेश लेकर कार्यक्रम शाम सुहानी में। तो देर न करते हुए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम के इस पहले संदेश के साथ, संदेश प्राप्त हुआ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़े हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, आकली दीवान मध्य प्रदेश से। खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डाबर। भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैदेही और अकीता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट। अगली फरमाइश के साथ आप सभी जुड़े हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र, साहिल और बिट्टा बजाज। जोहरी वाडा पैठड़ से मोरवे फहीम, आसमा, खुशी, अंजुम और परिवार के सभी सदस्य। अमरावती महारा से प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और हागोड़े परिवार के सभी सदस्य जुड़ चुके हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा, ईशांत देवांगन। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा जुड़ चुके हैं। मोताला महाराज से विजय, रत्नमाला, आरती, गौरी, ओम कुमार सुरलकर। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, योगेश कुमार, कीर्ति, संध्या और डीके साहू। करणवीर हाउस बुच्चो कैचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत जुड़ चुके हैं। मामूलवाड़ी महाराज से सुपान ताइडे, वसंतरा भोजने, निवृत्ति आडोकार और पीएस नहावकर। बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश, गौरव गरिमा, हर्ष आहूजा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहराज, जहां कई संदेश हमें प्राप्त हुआ है। निखिल भाटिया, नीति भाटिया और महरीन भाटिया, संदेश प्राप्त हुआ कनाडा से। कालेगांव जाफराबाद से जुड़े हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली सर्वद, सानवी, कल्पना देशमुख। गांव चौहलदा बागपत से संजय नमन, अपार ढींगिया जुड़ चुके हैं। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोतागण जुड़े हैं। नांदेड़ महाराज से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओम कुमार, साई गायकवाड़। ये ताला महाराज से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, सुप्रसाद, दुर्गेश्वरी जायसवाल। नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से निर्मला, विशाल, सोपान ताइडे, मलकापुर से नारायण और आशीष। धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत और क्रिस्टी पटवा। मजनू का टिल्ला से आप सभी श्रोता कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा, माही मलिक। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक जियाउल हक, मोहम्मद

मर्डावर और इन्हीं के साथ राजेंद्र कटारे। नेहरू चौक पैटर से सुरेश अनीता आरती पूजा प्रसाद सोनल और सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ गीता ओम सुभाष चंदन एकनाथ संगीता जाधव। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

जहां श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट हेमलता। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी वियोमिनी, पुरंजय, कविता, सिमरन और प्रजापति परिवार के सभी सदस्य। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र डूडी। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर, ममता, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित, हैप्पी रॉय। जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल रॉय। मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता आप सभी, जगन्नाथ, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मानस और कनिका। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजी, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडा लाडली, रिमझिम और सक्षम चौबे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल सितारा, नसरीन रोजी, बिट्टू साजदा और हिना कौसर। संदेश प्राप्त हुआ मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। गिरगांव महाराज से गजानन नादरे और मारुतराव पांचाल। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं नागपुर महाराज से कमल साहनी, पिंकी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इफ्जाल। रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी और सुनीता साहनी। शाजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जंदाड़े। संदेश हिंगोली महाराष्ट्र से। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोतागण जुड़े हैं बिरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तान्या करमकर। साधुशहर राजस्थान से रामकुमार चंद्रकला रेवाड़। यवतमाल विदर्भ मारा से संतोष खड़के और विनोद खड़ से। दरियापुर भावली महाराज से नवदीप येले, गजानन येले, विश्वदीप, सुशील येले। शेरी बडनेर अकोला से अरुणा बलदेव, आदित्य दामोदर। निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमप्रीत और इनके परिवार के सभी सदस्य। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, बेबी पूजा तामुरिया, इन्हीं के साथ राधिका, प्रभा देवी और अल कबीर। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश, गौरव, गरिमा शर्मा। सोंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका, गजेंद्र और हियांश चंदन। नसवाला चौक मलकापुर से संजय, निवृत्ति चीरसागर और संजय कुमार पट चौहान। छत्तीसगढ़ से जुड़े डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान शाहनवाज और इनके परिवार के सभी सदस्य। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी, शालिनी, टिवनीश खेड़ा। संदेश मिला फाजालिका पंजाब से।

कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर साइना अक्सर नाजिया इब्राहिम अदीब हसन मोहाली पंजाब से बबल और ओम प्रकाश मल्होत्रा भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल ईशान पूजा परिहार सोनाली दुबे मोनिका और रानू महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से कल्पनाताई लोखंडे प्रतीक्षा शैलेश स्वप्निल रक्षिता और रियांश लोखंडे संदेश मिला यवतमाल महाराष्ट्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोदले और आरती जोदले जुड़ चुके हैं। अशोक वर्मा अर्चना अनुज आयुषी रमेश मूसा राजकुमार बोड़ाना संदेश मिला सुदामा नगर खंडवा से। उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल भोला प्रवीण रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। अनारकली बाजार जगुराव से सुनील कमल दीपिका गव्या और सुच्चा सिंह पाठक इन्हीं के साथ विनोदपुरी जयपाल यादव। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी प्रकर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। श्रोताओं आप सभी से एक विनम्र अनुरोध, एक बार संदेश भेजने के बाद बार बार ना भेजें। इस क्रम में यदि आप बार बार संदेश भेजेंगे तो आपका संदेश नहीं भी पढ़ा जा सकता है। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहा बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद गुड़िया भाव्या निवेश और नियति कुमारी ने। ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान जयपाल दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश और इनके परिवार के सभी सदस्य। सहारनपुर से आशा सोनाली और सुरेश नारंग।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़े हैं गांव गोपी की नगरिया से मिठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगला पुला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण भोला, नमन साथ के साथ इनके परिवारी जन। गांव नोदरा से कोमल मास्टर, जसोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके मम्मी पापा। गांव कुमोदवन से जुड़े हैं रमेश, सुनील, रचना, गव्वर और हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, सोनिया, सिवान, चुन्ना। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ आप सभी जुड़े हैं बुलढाणा मारा से वासुदेव बोधवड़े, अनीता और रमेश राव गाठौड़। प्रकाशनगर मथुरा से जुड़े खड़क सिंह छोकर, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल रचिता और केशु रिदान खुराना। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता, घनश्याम, हरिशंकर, रत्नेश, प्रशांत, कालापारा से रामचंद्र और राम राजवाड़े। कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता, निहारिका, सुशांत और सुरेश चौरसिया। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष, कोयल सिक्का और इन्हीं के साथ भाविक सिक्का। खेल बाजार पानीपत से नरेश, भावना, लक्ष्य और कोयल मल्होत्रा। अडार नांदगाड़ छत्तीसगढ़ से माखन, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। अगली फरमाइश के साथ रामपट्टी से कपलेश्वर प्रसाद गुप्ता, कांति भूलिया, रजनी। डेर पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी।

जय सोनवनी, करिश्मा अविका साहिसा सोनवनी कोयते बस्ती पुनावली से जुड़ चुके हैं। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका जीविका सानू अर्चना कुमार, राजगवई राजवीर गवई मोताला महाराज से। गंडुडवारा इट्टा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा सायमा सरफराज गुलफराज और मुस्कान, मेन बाजार कुंडलवाड़ी मारा से गंगाधर येमेकर, प्रमोद प्रदीप येमेकर, गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे, राकेश रंजन राजीव रंजन, संजय ओम कुमार गुंजेश रिया साक्षी और परिवार के सभी सदस्य, चितलवाड़ी अकोला से अमोल अर्चना सर्वेश अधीरा राजवी और इनके सभी सदस्य, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार प्रभा देवी, लकी विकी रविंद्र नानू और रौनक सेन। गांधीनगर गुजरात से सुरेश मंजुला विशाल निशा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता सुभाष बब्बू डब्बू, बेगम इशरत अक्रम वसीम रूबीना आरिज नदीम शमीम ममता रानी पूनम कुमारी शर्मा, संदेश मिला सीतामणि से, कुप्टी महाराज से बंडू लोहार चंद्रकला देवीदास, चनुला श्रीवास अनीता अंजू योगिता रजन साहू हेमंत नामदेव धर्मदास वाधवानी, संदेश प्राप्त हुआ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू और तरुण यादव। बरवट बुलढाणा से नारायण हागे कमल देविया जय हागे जुड़ चुके हैं। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र मोहिनी कल्पित और गर्वी चौहान, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण पूजा जूली और जगदीश जौहरी, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला विशाल चेतन प्रियांशी और रोशनी मनवर। अगली फरमाइश के साथ जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया सोनू एंजल पपी भाटिया, दुबिदा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत। लातूर से संगीता जैन सूरज पीआर जैन, नांदेड़ से प्रकाश जैन।

श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहा जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामले करुणा मीना ने, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर जसवीर सीता गीता ने।

इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी काना और मनोहर बाई प्रभुलाल बागरी ने। बलकरण अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, उमेश प्रमिला बंचोर, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, सीटी और पिंटू दीवाना।

श्रोताओं, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न करने की मुझे अनुमति दीजिए। फिर से हाजिर होंगे आपके ढेरों संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पड़ोसियों का खूब सारा रखिए ध्यान। दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

बार बार देखो। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना बिलाल सईद की आवाज में। गीत लिखा कुमार ने, संगीत बिलाल सईद का था।

और आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलेस को फिल्म धुरंधर में। इस गीत को लिखा शाश्वत सचदेव ने, संगीत जैस्मिन सैंडलेस का।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचनाएं। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम एक ही फिल्म से कुछ ही पलों में।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म स्त्री 2 के कुछ गीत। इस क्रम में आइए सुनते हैं सबसे पहले वरुण जैन और शिल्पा राव को। गीत का संगीत दिया है सचिन जिगर ने और गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म स्त्री टू के कुछ गीत। इस फिल्म के सभी गीतों को लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत सचिन जिगर का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

समाचार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अच्छा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में

0: आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में

सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम हम आपके दिल में रहते हैं। गीत रचना समीर की, संगीत अनु मलिक का।

और आइए अब सुनते हैं अलीशा चिनॉय और सोनू निगम की आवाजों में ये गीत, फिल्म का नाम नो एंट्री। गीत लिखा समीर ने, संगीत अनु मलिक का।

0: 식으니까
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुहाने तराने, और आइए चलते चलते सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है ईवल रिटर्न 1920, स्वर महालक्ष्मी अय्यर का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ सुहाने तरानों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज

0: खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधावर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे। और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो।

0: बीसवीं सदी की हो, इक्कीसवीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साला विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाज़ें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविज़न कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज़ में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे

0: लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाए तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
1: और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
4: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
1: अच्छा।
4: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू

0: गया था उस टाइम।
1: आपके जवाब में एक्चुअली दो तीन ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत इसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
0: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सरवाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम। जैसे फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कॉन्टेंट देखते हैं तो हर एक कॉन्टेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कॉन्टेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपर गामिनी।
3: हाँ। और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें, जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
0: मैं, मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है।
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
1: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप

0: कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने गोप्रो भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड या
0: ये चीजें, यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी और बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट, अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है
3: जी,
4: तो

0: अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते हैं तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो
1: जी
0: यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी
0: बिल्कुल
1: कारण से,
0: जी
1: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें
0: जी
1: तो?
0: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिक।

0: एकल म्यूजिक।
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारु बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
0: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारु बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों

की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज

आईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।